सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 31, तदनुसार 21 जून सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 हो रहे हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। International Yoga Day 2026 is being celebrated across the globe today. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. The national celebration is underway at Red Road, witnessing participation of thousands of yoga enthusiasts at the venue, while millions of citizens are expected to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. More from our correspondent.
2: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event will begin at 7:30 in the morning at Garrison Ground in Sadar. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG, re-examination will be conducted this afternoon. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held from 2 p.m. to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all system jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. The NTA said that it is fully prepared for the smooth, fair, transparent conduct of the examination. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, has said that three Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo with 94 Indian crew members have successfully transited the Strait of Hormuz yesterday and are en route to India. These oil tankers are Desh Vaibhav, Desh Vibhor and Sanmar Herald. In a social media post, Mr. Sonowal said that under the decisive leadership

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम खेती की बातें में आज हम जानेंगे मुलेठी की खेती पर कुछ आवश्यक जानकारियां।

सभी कृषक भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और जोहार। आज खेती की बातें कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं अनिमेश कुमार बक्सी। आज हम बातें करेंगे एक ऐसी फसल की जो दवा भी है और नकदी भी, यानी मुलेठी के बारे में बातें होंगी। आयुर्वेद में मुलेठी को यष्टि मधु भी बोलते हैं। गले की खराश खांसी में हम सब ने इसका स्वाद लिया है, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी खेती से एक एकड़ में 2 से 3 लाख तक की कमाई हो सकती है। चलिए जानते हैं कि मुलेठी की खेती क्या है और इसके चमत्कारी गुण क्या क्या होते हैं। किसान भाई बहनों, मुलेठी एक बहुवर्षीय पौधा है और इसकी जड़ जो है वो बड़ी काम की होती है। बाजार में सूखी जड़ 300 से 500 रुपए किलो बिकती है। दवा कंपनियां इसे हाथों हाथ लेती हैं और ये हमेशा डिमांड में रहती है। और खास बात इसके बारे में आपको बता दूं कि ये कम पानी वाली फसल है। झारखंड के पथरीली कम उपजाऊ टांड जमीन में भी ये हो जाती है। जहां धान नहीं होता वहां मुलेठी सोना उगल देती है। खेती कैसे करें, तो 3 आसान उपाय हैं, उसको आप ध्यान में रखें। पहला है जमीन, बलुआ दोमट मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए। पानी भरने वाली जमीन में जड़ सड़ जाएगी और इसका जो पीएच मान है 6 से 8 होना चाहिए। दूसरा है बुआई, फरवरी से मार्च या फिर जून से अगस्त के बीच इसे हम बो सकते हैं। बीज से या जड़ के टुकड़े भी लगा सकते हैं। जड़ के 10 से 15 सेंटीमीटर के टुकड़े 45x45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। एक एकड़ में 8 से 10 क्विंटल जड़ का टुकड़ा बीज के रूप में लगता है। तीसरा है खाद पानी, गोबर की खाद 10 टन प्रति एकड़ बेस में डालना चाहिए। रासायनिक खाद कम लगती है, पानी हफ्ते में एक बार, वो भी गर्मी में, बरसात में पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। चौथा है तुड़ाई, धैर्य रखे किसान भाई बहनों, मुलेठी 2.5 से 3 साल में तैयार हो जाती है। जब पत्ते पीले पड़कर गिरने लगते हैं तब जड़ को खोदना चाहिए और एक एकड़ से 20 से 25 क्विंटल सूखी जड़ जो है वो निकल जाती है। मुलेठी के लाभकारी गुण क्या है, अब इस पर बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि धरती की मिठास और तन का रखवाला है मुलेठी। आयुर्वेद में मुलेठी को मधुर और रसायन कहा गया है। इसके गुण हैं कि खांसी, गले की खराश, दमा में ये रामबाण काम करता है। शहद के साथ इसको लेना चाहिए तो ये तुरंत आराम देता है। पेट के लिए एसिडिटी, अल्सर, कब्ज में ये फायदेमंद रहता है। पेट की गर्मी को शांत करता है। इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और आपको बता दूं कि कोरोना के बाद जो है उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। चौथा है त्वचा और बाल, इसके पेस्ट बनाने से और इसको चेहरे पे लगाने से दाग धब्बे भी हल्के पड़ जाते हैं और बालों को काला और मजबूत भी बनाता है। हाई बीपी वाले मरीज जो हैं इसको ना खाएं और दिन में 3 से 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दूं कि मुलेठी की जो खेती है वो एक बार मेहनत करने से 3 साल तक कमाई देती है। बीच में मूंग उड़द जैसी कम अवधि वाली फसल भी आप ले सकते हैं। बाजार की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि औषधि मंडी और दवा कंपनियां इसे हाथों हाथ ले लेती हैं, या फिर नज़दीकी कोई कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहां पर जाकर आप तकनीकी जानकारी प्राप्त कर इसे बेच सकते हैं। याद रखें मित्रों, मुलेठी बोइएगा तो मीठी कमाई होगी। मुलेठी की खेती और इसके लाभकारी गुण, इसी विषय पर बातें हो रही थी कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत। आप सभी किसान भाई बहनों को पुनः एक बार जोहार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।

दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे और आज इस कार्यक्रम में हमने बातें की मुलेठी की खेती पर, कुछ आवश्यक जानकारियां श्रोताओं आपने सुना। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है चिंतन। श्रोताओं, आज है 21 जून, योग और संगीत, अंतरात्मा की दो विधाएं और एक दिन, एक गूंज। ये केवल वर्ष का सबसे लंबा दिन नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दो सबसे बड़े उत्सवों का संगम भी है। इस दिन पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस एक साथ मना रहा है। ये कोई संयोग मात्र नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक सूक्ष्म संकेत है कि शरीर और चेतना का जो संतुलन योग से सधता है, उसे पूर्णता संगीत की स्वर लहरियां देती हैं। योग यदि जीवन का अनुशासन है, तो संगीत उसकी अभिव्यक्ति है। दोनों का परम लक्ष्य एक ही है, मनुष्य को उसके स्वर से जोड़ना और ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन करना।

ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी मातृभूमि को समर्पित इस देशगान के साथ।

संवेद स्वरों में अभी आपने सुना ये देशगान। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रही हैं कार्यक्रम वंदना। और अब आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये भजन

कार्यक्रम वंदना में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में भजन। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 होने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के कोलकाता के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामूहिक राष्ट्रीय स्तरीय योगाभ्यास का प्रदर्शन रेड कोलकाता पश्चिम बंगाल। इसका जीवन प्रसारण आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूँ। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: Thank you, namaste. And we can see that the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Honorable Governor of West Bengal, Shri Ravindra Narayan Ravi, and the Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Shubhendu Adhikari, have arrived at the iconic Red Road. And the Honorable Prime Minister will be leading the nation today, and he will personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here, and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां

0: पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
1: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
0: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया, 13 जून से 20 जून तक आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों का की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
0: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर.एन. रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं, योग साधक यहाँ पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
1: यस एंड एवरी enthusiast here, and now the Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Shubhendu.

0: অধিকারী
1: বন্দে সমবেত সুনাগরিক ভদ্রমণ্ডলী, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, এবং যার হাত ধরে সিটি অফ জয় এই কল্লোলনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় আরএন রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন, এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না, কারণ আমাদের অজানা, আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে। কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন, তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ, যোগ পূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় 257,000 রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান এই যোগে পার্টিসিপেট করছে। আমার বিশ্বাস, আজকে পশ্চিমবঙ্গে গোটা রাজ্যে, দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, কোটিরও বেশি মানুষ এই যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন। আর কলকাতা বিগত দিনের সব রেকর্ড ভেঙে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগে অংশগ্রহণ করবেন। আমি কথা বাড়াবো না, শুধু একটা কথাই বলবো, 1893 সালে বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, তিনি এই যোগের সম্পর্কে কি বলেছিলেন আপনারা জানেন, যোগই একমাত্র মুক্তির উপায়, যোগই আনন্দ, যোগই প্রেম, এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ, তিনি অনেক আগে বলে গেছেন। এই যোগ পশ্চিমবঙ্গের পুরনো সংস্কৃতি, বেদ উপনিষদ গীতা থেকে শুরু করে এই যোগের কথা আমরা সবাই পড়েছি এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে। 1920 সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ 1923 সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমি আর কথা বাড়াবো না, ইতিহাস আমরা জানি, আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে, আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া, ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 12তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, 100 কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি।
0: That was the Honorable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honourable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honourable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais, where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
2: Rajpal Sri R.N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग-अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग इसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and keep and help to keep lifestyle

This is a way. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों,

0: इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसना सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहाँ पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honourable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honourable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
3: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते

0: दोनों चोखे खुलून दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्थाएं नहीं सुन। जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
1: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
0: हम सब,
1: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
2: The Honorable Prime Minister has just arrived and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
1: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
1: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेपेटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं।
1: जी,
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
1: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से।
1: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Manish Naje, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. Hamari chetna hamare shareer ko follow karti hai. Hum chitt se kaya ki taraf badhte hain. To ye jo grivasan hai, isme hum kya hota hai ki hamari जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है अध्यात्म में।
4: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत, एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जान

0: नहीं है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना। हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप योगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंद चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
2: स्कंद चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
1: जी,
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं। वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे। तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य

0: एक ही होता है
1: जी yes, और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं जी, एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
1: जी।
0: And as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa, through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: Ji, yahan par abhi पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को, हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है, ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
1: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
0: एंड वी कैन आल्सो सी नीलम एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज going to many

0: enthusiasts and volunteers who have come here, and he's interacting with them, and he's just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed, a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
1: Ji, bilkul. Aur ye jo aasan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं. लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है, और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है जी. और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में. यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए, और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी,
0: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here, and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
1: जी, और अब यहाँ अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद, शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा, सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए. उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठ कर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर

0: का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
1: नाउ आई थिंक The enthusiasts are performing Vakrasan.
0: So, जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन। और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है आसन, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
0: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
0: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
1: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
0: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं, इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है। और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
2: जी।
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
2: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है, और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
0: जी।
3: गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम

0: योग के लाभों के बारे में बात कर रही हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रही हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
1: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूँ मैं, बहुत ही सुंदर।
0: जी, और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
2: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है जी। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं, उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
0: जी, सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
2: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
0: जी।
2: और पवन मुक्त, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
0: जी। गुरु गणेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
1: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध
0: जी,
1: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएं, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
2: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाती मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोपनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपाल भाती में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच, जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
0: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है, डॉक्टर प्रतिमा?
2: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है, युक्तम युक्तम त्यजेद वायु युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। गर्मी

0: में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
1: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये, और जो हमारी अग्नि है वात सॉरी पित्त जो है हमारा उसको व्यवस्थित करने का काम करता है, और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
0: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है।
1: जी, और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है। भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद।
0: क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
1: जी।
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं, और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी।
0: जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें,
1: और बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
0: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं।
2: एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, व्हिच इज अ टाइम फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट एंड बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स।
0: मेडिटेशन इज नॉट जस्ट मेडिटेशन, इट इज मेडिकेशन ऑफ बॉडी एज वेल एज माइंड। क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
1: जी, और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा, और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया. तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो. अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी. आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे. और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है, और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है.
1: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान. और यहाँ पर अब प्रार्थना,
4: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है.
4: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर.
1: जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है,
4: और धीरे धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं. और मैं गुरु जी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं, और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं. तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है, और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं, और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं. आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है. तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई.
2: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: जी, जल थल नभ सभी योग में होंगे. हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है. दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे. और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है. तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है, और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें.
2: योगा 365, that is what the Honorable Prime Minister had mentioned, and we would also like to inform our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace, but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our ऑडियंस?
3: यस, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बनके 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें। एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट, वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं। जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं। और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूँ जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूँ। मैं एक दृष्टा हूँ। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डली लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें। इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीज़ें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम हैं वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
5: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinhaji mentioned, and as you also mentioned, Neelamji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and coast guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there.

0: and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में कार्यालयों में संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों. माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कम कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है. सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा. और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार, डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं. नमस्कार.
2: नमस्कार.

वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामूहिक राष्ट्र स्तरीय योगाभ्यास कर प्रदर्शन रेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसका प्रसारण हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्म कुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट। नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
4: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय

0: ये सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
3: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनः परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मोज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैंसी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अभ्यास का किया नेतृत्व। कहा, मानव जीवन को निरंतर विकास के लिए प्रेरित करता है योग। आज आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले प्रशासन चौकस, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य भर के 67 परीक्षा केंद्रों पर की गई है व्यापक तैयारियां। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करना आयोग की प्राथमिकता। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले 2 दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीते 4 स्वर्ण समेत 18 पदक। और अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग मानव जीवन को निरंतर विकास और प्रगति के लिए प्रेरित करता है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: उन्होंने कहा कि योग के जरिए हम लोग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के प्रति अधिक मजबूत हो सकते हैं।
1: संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है।
0: इधर राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आज आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले प्रशासन पूरी तरह चौकस है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राजधानी रांची समेत राज्य भर के 67 परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। विस्तृत ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज होने वाली नीट यूजी री एग्जाम 2026 को लेकर रांची समेत राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तथा सभी केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। परीक्षा से पूर्व कल जिला प्रशासन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को हाई अलर्ट जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए। साथ ही फोटोकॉपी दुकानों, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थानों की विशेष निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने परीक्षा के दौरान भीड़ जुटाने, सभा आयोजन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर घर जाकर फॉर्म का वितरण करेंगे। हर मतदाता को अनिवार्य रूप से यह फॉर्म भरकर BLO को देना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करना आयोग की प्राथमिकता होगी।
3: कितना भी झारखंड में कितना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, ERO, AERO, कंप्यूटर आपका एडजस्टमेंट ट्रेनिंग कम्प्लीट हो चुका है। सोमवार से फील्ड लेवल पर प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर आपका BLO का ट्रेनिंग प्रारंभ होगा, ताकि एनुमरेशन फेस में किसी भी पात्र नागरिक के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसका प्रक्रिया पूरा तरह से डिटेल बताएगा। इसलिए एक त्रुटि रहित मतदान सूची निर्माण करने के लिए सभी BLO भी सहयोग करेंगे।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को पद्म भूषण से सम्मानित करेंगी। नागरिक अलंकरण समारोह में यह सम्मान उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे। आकाशवाणी के

0: ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक स्थलों से नई ऊर्जा और सेवा की प्रेरणा मिलती है। साथ ही उन्होंने झारखंड वासियों की सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त ने अफवाहों से सावधान रहने और स्थानीय थाना से समन्वय स्थापित कर निर्धारित रूट से ही जुलूस निकालने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले 2 दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान रांची, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो समेत 17 जिलों में तेज हवा और मेघ गर्जन होने की संभावना है। 12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 पदक जीते। इनमें 4 स्वर्ण, 5 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर अखबारों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और दोबारा हो रही नीट परीक्षा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, रिन पास का अध्ययन बताता है कि योग अभ्यास से छूट सकती है स्मार्टफोन की लत। हिंदुस्तान की हेडलाइन है, नीट परीक्षा को लेकर रिम्स मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट आज होंगे नजरबंद। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एपीपी के 134 पदों के लिए जारी रिजल्ट पर विवाद, जेपीएससी सदस्यों ने नहीं किया हस्ताक्षर, फिर भी रिजल्ट जारी। दैनिक जागरण लिखता है, राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद एक ही दिन में टूट गया कांग्रेस का गुरूर, राजद माले के सामने नतमस्तक हुई पार्टी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अभ्यास का किया नेतृत्व, कहा मानव जीवन को निरंतर विकास के लिए प्रेरित करता है योग। आज आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले प्रशासन चौकस, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य भर के 67 परीक्षा केंद्रों पर की गई है व्यापक तैयारियां। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करना आयोग की प्राथमिकता। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले 2 दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीते 4 स्वर्ण समेत 18 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। नमस्कार जमशेदपुर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के संगीतमय सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। आज की सुबह कोई आम सुबह नहीं है श्रोताओं। आज है 21 जून 2026। आज कैलेंडर का वो पन्ना पलटा है जहां ब्रह्मांड की दो सबसे खूबसूरत शक्तियां एक साथ आकर गले मिल रही हैं। आज एक तरफ जहां पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुरों की महफिल सजी है विश्व संगीत दिवस की। यानी आज योग भी है और भोग से मुक्ति का उद्योग भी, और इसे खूबसूरत बना रहा है हमारा संगीत। श्रोताओं, इस साल 2026 में योग दिवस की थीम हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है, योग फॉर एजिंग। लेकिन सोचिए जरा, सद्भाव संगीत के बिना कैसे अधूरा है। संगीत ही तो सुरों का सद्भाव है। तो बस अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, या यूं कहें कि अपने योगा मैट को बिछा लीजिए और ईयरफोन्स लगा लीजिए। अगले कुछ पलों तक हम और आप चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आसन भी होगा और तान भी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये खूबसूरत संगीत सफर।

फिल्म संगीत का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में। गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने और बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने।

श्रोताओं, जब हम भारत की बात करते हैं तो योग और संगीत हमारे लिए कोई ट्रेंड नहीं है, ये तो हमारे डीएनए में है, हमारी मिट्टी की खुशबू में है। हमारे वेदों को देखिए, सामवेद तो पूरा का पूरा संगीत को समर्पित है। और शिव, भगवान शिव आदि गुरु भी हैं जिन्होंने योग की शुरुआत की, और वही नटराज भी हैं जिनके डमरू से संगीत और नृत्य के 14 सूत्र निकले। भारत में योग और संगीत दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, समाधि, यानी खुद से मिलना। योग शरीर और सांसों के जरिए चित्त को शांत करता है, संगीत ध्वनि के जरिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। श्रोताओं, योग शरीर की सांसों का अनुशासन है तो संगीत उसी सांस की अभिव्यक्ति है। योग से थमता है मन और संगीत से झूमता है अंतर्मन। पुराने जमाने में ऋषि मुनि जब जंगलों में ध्यान लगाते थे तो वे प्रकृति के संगीत को सुनते थे, झरनों की आवाज हो या हवा की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट, ये भी तो संगीत था। आज हमने उसी विरासत को आधुनिक रूप दे दिया है।

फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना अलीसा मेंडोसा और मोहित चौहान की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल हैं और धुन बनाई है शंकर एहसान और लोय ने। और श्रोताओं इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 9 बजने को है अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: کے ساتھ میں فرحت ناز. देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग. मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है. प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया.
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है. योग हमें डू और डोंट सिखाता है. और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है. साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता. योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है.
0: देश के अलावा विदेशों में भी योग का आयोजन किया गया. अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास का आग्रह किया. इस अवसर पर कल कनाडा के टोरंटो में सरकारी प्रतिनिधियों, राजनयिकों और योगाचार्यों ने ओंटारियो विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की. वहीं ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया के नेतृत्व में विशेष योग सत्र हुआ. स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है. परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं. ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित हो रही है. परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है. परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का भी अभ्यास किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे. इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है. इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं. इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है. ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड. श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है. अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं. ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है. उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है. 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है. 2 वर्ष में एक बार होने वाला ये महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था. समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और एआई फिल्में प्रदर्शित की गई. आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा. श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और ऑन स्पॉट पंजीकरण के लिए कल जिला मुख्यालय जम्मू में 75 डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. पंजीकरण की सुविधा महाजन हॉल, शालामार और तवी नदी तट जम्मू में उपलब्ध होगी. साधुओं के लिए निर्धारित केंद्र गीता भवन, परेड और श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जम्मू है. गैर ईकेवाईसी पंजीकरणों को ईकेवाईसी पंजीकरणों में परिवर्तित करने का कार्य रेलवे स्टेशन जम्मू और यात्री निवास भगवती नगर जम्मू में किया जाएगा. मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है. बिहार, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माहे में मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है. इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है. वहीं बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है. मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाने की सलाह दी है. श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारतीय का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा. मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

0: इंद्र से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर, और श्रोताओं आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम सुरंजना में। आज के सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। नमस्कार श्रोताओं, आज है जून का तीसरा रविवार यानी 21 जून 2026। कैलेंडर पर आज तारीख के नीचे लिखा है फादर्स डे। सोशल मीडिया पर सुबह से ही तस्वीरों की बाढ़ आई हुई है। कोई लिख रहा है माय फादर माय हीरो, तो कोई पापा के साथ 5 साल पुरानी सेल्फी पोस्ट कर रहा है। लेकिन श्रोताओं, कभी सोचा है कि जिस इंसान के लिए आज पूरी दुनिया स्टेटस लगा रही है, वो इस वक्त क्या कर रहा होगा? वो इस वक्त या तो अखबार का तीसरा पन्ना पढ़ रहे होंगे, या फिर पानी की मोटर बंद करने गए होंगे, या फिर चश्मा नाक पर टिकाए सोच रहे होंगे कि आजकल के बच्चे फोन में इतना क्या देखते रहते हैं। पापा का प्यार ना इस सोशल मीडिया की चकाचौंध से बहुत दूर किसी पुरानी दराज में रखे उस सिक्कों के गुल्लक जैसा है, जो खनकता तभी है जब घर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज इसी अनकहे प्यार की बात करेंगे कार्यक्रम सुरंजना में।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना और आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो हमारे पूरे घर की छत है। अच्छा कभी गौर किया है श्रोताओं, घर में जब धूप आती है, बारिश होती है या तूफान आता है तो सबसे पहले कौन झेलता है? छत। लेकिन हम घर के अंदर बैठकर दीवारों के रंग की तारीफ करते हैं, फर्श के मार्बल की तारीफ करते हैं। छत को तो हम तभी देखते हैं जब उसमें कोई दरार आ जाए या पानी टपकने लगे। पिता भी हमारे परिवार की उसी छत की तरह होते हैं। जब तक वो हैं, हमें कभी धूप का एहसास नहीं होता। वो बाहर ऑफिस में, दुकान पर या खेतों में बॉस की डांट सहते हैं, ग्राहकों के नखरे उठाते हैं और घर आकर बहुत आराम से कहते हैं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसे की चिंता मत करो। बचपन में जब हम खिलौने की दुकान पर किसी चीज के लिए मचलते थे तो माँ कहती थी, पापा से पूछो, और पापा खिलौने की कीमत देकर अपनी जेब टटोलते थे। जब वो मना करते थे ना तो हमें लगता था कि पापा कितने सख्त हैं, कितने कंजूस हैं। लेकिन आज जब हम खुद कमाने लगे हैं, जब महीने के आखिरी हफ्ते में बजट बिगड़ता है, तब समझ आता है कि कितनी ख्वाहिशों को मारकर किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाना कितना भारी काम है। पापा कंजूस नहीं थे श्रोताओं, वो बस दूरदर्शी थे। वो हमारा कल सुरक्षित कर रहे थे।

FM के 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रही हैं कार्यक्रम सुरंजना। श्रोताओं, आप जितने भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हों, घर पे हों या ऑफिस में हों, अगर आपके पापा आपके पास हैं या उनका कोई पुराना वॉलेट कहीं घर में रखा है तो आज चुपके से उस वॉलेट को खोल कर देखिए। आपको उसमें पैसे कम मिलेंगे लेकिन आपकी बचपन की कोई पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी पहली क्लास का रिपोर्ट कार्ड या आपके हाथ से लिखी हुई कोई टूटी फूटी चिट्ठी जरूर मिलेगी। बाप का बटुआ सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं करता, वो औलाद की यादों का सबसे सुरक्षित बैंक लॉकर होता है। श्रोताओं, आज आपको क्या करना है, आज उस पुराने वॉलेट के अंदर अपनी तरफ से एक छोटी सी चिट्ठी छुपा कर रख दीजिए। उस चिट्ठी में लिखिए, पापा आपकी आधी चिंताएं आज से मेरी हुई, अब आप आराम कीजिए। यकीन मानिए, जब वो अगली बार अपना बटुआ खोलेंगे ना, तो दुनिया की कोई भी दौलत उन्हें वो खुशी नहीं दे पाएगी जो आपकी ये दो लाइनें देंगी।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना। और श्रोताओं चलते चलते बस कुछ लाइनें उन पिताओं के नाम जो कभी रोते नहीं लेकिन जिनके सीने में समंदर जितना दर्द और आसमान जितना प्यार छुपा होता है, वो जो चेहरे पर कभी शिकन नहीं लाते, वो जो अपनी फटी कमीज में भी मुस्कुराते हैं। माँ तो रोकर बयां कर देती है अपना हाले दिल, पर वो बाप है श्रोताओं जो अंदर ही अंदर पिघल जाते हैं। उनकी डांट में छुपा है कल का उजाला, उनके सख्त हाथों ने ही हमें है संभाला। आज वक्त निकालकर चूम लीजिए उन हाथों को जिन्होंने खुद को घिसकर हमें इस काबिल बना डाला। श्रोताओं जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। सोशल मीडिया के स्टेटस 24 घंटे में गायब हो जाएंगे लेकिन पापा का वो बूढ़ा होता हाथ हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। आज झिझक छोड़िए, पास जाइए, उन्हें कस कर गले लगाइए और अगर दूर हैं तो फोन मिला लीजिए। आप सभी को और दुनिया के हर उस सुपर हीरो को जो पापा कहलाते हैं, फादर्स डे 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ श्रोताओं आज का ये कार्यक्रम सुरंजना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: सभी श्रोता बच्चों का कार्यक्रम में स्वागत। और पल्लव के आज के इस अंक के साथ हमेशा की तरह मैं आपकी सीमा दीदी। आइए आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बता दें। योग एक अद्भुत अभ्यास है जो बच्चों सहित सभी उम्र के लोगों को अनेक शारीरिक और मानसिक लाभ प्रदान करता है। अगर आप अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें तो शक्ति, लचीलापन, संतुलन और ध्यान विकसित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ये विश्राम को

0: बढ़ावा देता है, तनाव को कम करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। आज विश्व योग दिवस है। इस विशेष अवसर पर योग के महत्व पर कुछ बच्चों से बातचीत तो हम आपको सुनवाएंगे ही, साथ ही योगासन और बच्चे इस विषय पर योग गुरु अंशु सरकार से ली गई भेंट वार्ता भी आप सुन पाएंगे। जैसा कि आगामी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, तो ओलंपिक खेल के बारे में भी आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि योग बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है और साथ ही योगासन से आप तनाव मुक्त भी रहते हैं। योगासन करने से बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कम उम्र से ही अगर बच्चे योग करते हैं तो उन्हें कई तरह के रोग और स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखा जा सकता है। वे बच्चे जो खेल कूद में रुचि नहीं रखते हैं, उनके लिए योग शारीरिक गतिविधियों की कमी को पूरा करेगा। सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन और योगासन से चंचल बच्चों का मन शांत होता है। योग से बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और उन्हें कई बीमारियों से भी बचाता है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए योग करना बहुत आवश्यक होता है। योग, जो कि 10,000 सालों से भी अधिक समय से प्रचलन में है, सबसे पुराने जीवंत साहित्य ऋग्वेद में पाया जाता है। योग आपके मन और मस्तिष्क को स्थिर रखता है, हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है, जिसके चलते हम स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं। योग हमारे तन, मन तथा आत्मा के लिए लाभदायक है। जब योग इतना ही लाभदायक है तो हमें इसे जरूर अपनाना चाहिए। योग के चमत्कार को तो पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। इसी वजह से दुनिया के विभिन्न देशों में योग शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। योग के प्रभाव को देखते हुए आज चिकित्सक एवं वैज्ञानिक योग के अभ्यास की सलाह देते हैं। छात्र जीवन के लिए तो योग बहुत ही आवश्यक है।
1: तो योग के महत्व पर कुछ बच्चे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम मयंक कुमार है। मैं कक्षा 6 से मैं पढ़ता हूँ।
1: कौन से स्कूल में पढ़ते हैं?
2: मैं राजेंद्र विद्यालय का छात्र हूँ। योग दिवस पर मैं अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहता हूँ।

0: Pranatoshmi. It means, I salute to the sage Patanjali who gave us yoga for purifying the mind, words and speech to remove the impurities of the body. Patanjali gave us the medicine. Allow me to go near to the one who has given these things to us. To Patanjali, I bow down my head with folded hands. Good morning, everyone. 21st of June is celebrated as International Day of Yoga. Yoga is not just a form of exercise. It is an ancient gift from India to the whole world. The word yoga comes from Sanskrit and means to unite. And the theme for this year's Yoga Day is Yoga for Healthy Aging. This theme highlights yoga's role in promoting longevity, mobility, and preventive health care across all stages of life. Thank you.
1: आपका नाम क्या है?
2: अविना फाइचुरा है.
1: कौन से स्कूल में पढ़ते हैं?
2: टैगोर अकेडमी.
1: कौन से क्लास में?
2: 1D.
1: आज विश्व योगा दिवस है, आपको कैसा लग रहा है?
2: अच्छा लग रहा है.
1: आप योगा करते हैं?
2: यस.
1: कौन सिखाता है आपको?
2: मैं स्कूल में.
1: आपकी टीचर सिखाती है?
2: यस.
1: कौन कौन सा आसन करते हैं आप?
2: ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, बहुत सारे आसन करता हूँ.
1: आपको क्या क्या फायदा मिल रहा है आसन करने से?
2: याद हो जा रहा है, सारा पढ़ाई मुझे चलती.
1: बिल्कुल. और क्या फायदा हो रहा है?
2: कंसंट्रेशन बढ़ रहा है.
1: और अपने दोस्तों से क्या कहेंगे आप?
2: सब लोग योगा करिए और अपने टाइम से काम करिए.
1: बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव.
2: धन्यवाद दीदी.
1: आपका नाम क्या है?
3: मंतीरा सिंह.
1: कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: वितान विदारे 10th+2.
1: अच्छा, आप योगा करते हैं?
3: यस.
1: कौन कौन सा आसन करते हैं?
3: तरातन, वितातन, प्राणायाम.
1: आपको ये सब आसन करके कैसा लगता है? क्या फायदा होता है?
3: अच्छा लगता है, पढ़ाई में मन लगता है, याद जल्दी हो जाता है.
1: अपने दोस्तों से क्या कहेंगे?
3: मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ जल्दी उठे और योगासन करे.
1: बहुत बहुत धन्यवाद मनकीरत.
3: धन्यवाद.
1: आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम

0: आयुष कुमार रजक है।
1: आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं?
0: मैं अमर ज्योति स्कूल में पढ़ता हूँ।
1: कौन से क्लास में?
0: मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ।
1: आज विश्व योग दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे योग के बारे में?
0: योग शब्द संस्कृत मूल शब्द युज से आया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या बांधना।
1: योग करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है?
0: योग से शरीर की लचीलता और संतुलन में सुधार होता है। योग तनाव कम करने में सहायक होता है। योग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। योग हमारे तनाव को कम करता है। योग करने से हमें इस प्रकार बहुत लाभ है।
1: अपने दोस्तों से आप क्या कहेंगे?
0: सभी कोई सुबह टाइम से जल्दी उठे और योग आसन करें।
1: आयुष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम अखिला प्रांजलि है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं JH तारापोर स्कूल धटकीडी में पढ़ती हूँ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन सारी दुनिया योगाभ्यास करेगी। अब दुनिया समझ रही है कि शरीर मन बुद्धि आत्मा का सामर्थ्य बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए योग ही उपाय है। सृष्टा ने अपनी सारी शक्तियाँ मानव को दी। वह शक्ति जागृत करने और बनाए रखने के लिए योग बहुत उपयोगी है। बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष धनी गरीब सभी योगाभ्यास कर सकते हैं। हर प्रकार की व्याधि का समाधान है योग। योग हमारे ऋषि मुनियों की अमूल्य देन है। विश्व गुरु भारत की सर्वोत्तम उपलब्धि। हमारे शिक्षक कहते हैं कि गौतम बुद्ध महावीर राम और कृष्ण ही नहीं भगवान शंकर भी योगी राज थे, योगेश्वर थे। सुनते हैं कि योगाभ्यास परम शक्ति देता है, इसलिए योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए सबके लिए।
3: योग के महत्व पर कुछ बच्चों से बातचीत अभी आप सुन रहे थे। और बच्चों, अब आइए योगासन और बच्चे इस विषय पर योग गुरु अंशु सरकार से ली गई भेंट वार्ता सुनते हैं, जो हमें बताएंगे कि योगासन किस प्रकार बच्चों के लिए लाभदायक है।
4: बच्चों, हम सभी के जीवन में योग का काफी महत्व है, आप बच्चों को भी योग अपनाना चाहिए। बच्चों, आज हमारे बीच मौजूद हैं योग गुरु अंशु सरकार, आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इनसे आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि योग क्या है।
5: योग हमारे भारतवर्ष का धरोहर है। पिछले 1000 वर्षों से ऋषि मुनि ने इनका लाभ लिया है। अभी आज इस वर्तमान युग में जहाँ श्वास में प्रदूषण, खाना में मिलावट, चारों तरफ तनाव, ऐसे अवस्था में योग एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप निरोग एवं चिंतामुक्त रह सकते हैं।
4: आज देखा जाए तो काफी भागदौड़ भरी जिंदगी है और माता पिता के साथ बच्चों के जीवन में भी काफी बदलाव आया है। बड़ों के साथ साथ बच्चों के जीवन में भी वक्त की काफी कमी है ना। अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या बच्चे योग अपना सकते हैं?
5: योग हमारा देश का मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड।
4: बिल्कुल।
5: अगर बच्चे मजबूत होंगे तभी तो इस महान देश भारतवर्ष का आने वाला भविष्य उज्ज्वल होगा। मैं इस योग में 36 वर्ष का तजुर्बा रखता हूँ, 36 ईयर से मैं केवल योगी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज के इस कृत्रिम दुनिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा जरूरी है तो वह बच्चों को, क्योंकि
4: ये बेस मजबूत होगा।
5: बेस मजबूत होगा। कहावत है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन यह हो रहा है अगर आज भला तो आने वाला दिन भला। तो बच्चों को अगर योग प्राणायाम एवं ध्यान कराया जाए तो आने वाला भविष्य निरोग एवं चिंतामुक्त रह सकते हैं, तभी जाके हमारे इस महान देश का उद्धार हो।
4: बिल्कुल। आज बच्चे जब उठते हैं तो
5: ऊर्जा
4: उठना है, ऊर्जा है,
5: वो नहीं मिलती,
4: वो नहीं है, आलस रहता है।
5: इसमें योग का तो पूरी भूमिका है। आप कुछ दिन तक अगर अपने बच्चों को योग करा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि इसको आपको रिजल्ट दिखेगी, उसके बाद आपको उठाने का जरूरत नहीं है।
4: बिल्कुल।
5: वो उठेगी, मम्मी सवेरे हो गया, ये संभव है।
4: तो माता पिता को फिर उठाने की जरूरत नहीं है, वो
5: माता पिता को बच्चे उठाएंगे। ये संभव है अगर आप शुरू में कुछ दिन इनिशिएटिव लें, सुपदक्षेप लें और बच्चा को पीछे पड़ के उसको इस दिशा में ले जाए। क्योंकि दिशा अगर सही हो, नदी का दिशा अगर सही हो तो गांव को बसा देगा, कोई अगर बाढ़ में आ जाए तो गांव को उजाड़ भी देगा। तो इसीलिए कुछ दिन तक आपको बच्चों के पीछे पड़ना है। मैं भी एक पापा हूँ, मेरे भी एक बच्ची है। मैंने अगर कुछ दिन तक बच्चों को इस लाइन में ले गए, दिशा शुरू में थोड़ा सा आपको दिक्कत लग सकती है, लेकिन उसके बाद इसका इफेक्ट जीवन का अंतिम सांस तक आपको मिलेगा इसका इफेक्ट। क्योंकि आपको भविष्य में अगर किसी बच्चों का जब बड़े हो जाए उनका जरूरत पड़ेगा कंधा का, वो मजबूत कंधा भी आपको भविष्य में मिलेगा, ये उसका नींव डाल दीजिए। जितने भी हमारे बच्चे, जितने उनका पेरेंट्स है, मैं उनसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने बच्चों को योग के प्रति उसको ध्यान लगाएं और उसको रुचि जिलाएं और आने वाला भविष्य को सुने।

0: चेहरा बनाए,
1: उन्हें जागरूक करें।
0: जी
1: ऐसे कौन कौन से आसन हैं जो बच्चों को करने चाहिए आप बताइए।
0: देखिए बच्चों को तो कई आसन है जिसमें उनका अलग अलग पहलू को छूता है। पहले कोई बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा, उसके लिए हाइट बढ़ाने के लिए जैसे भुजंगासन ठीक है, उसके बाद आपका शशंगासन है, उष्ट्रासन है जिसके कारण उनका हाइट में बढ़ोतरी होगी। किसी का याद नहीं आता है उनके लिए सहज प्राणायाम नंबर 2 है। मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए, रिजल्ट क्या होगा, पढ़ाई का समय में दूध भी लेके गए मम्मी तो नहीं, मम्मी अभी पीने का समय नहीं है मुझे थोड़ा पढ़ना है, टेंशन तनाव रिजल्ट क्या होगा, उनके लिए कई ऐसा प्राणायाम है। वृक्षासन एकाग्रता को बढ़ाता है। सब मिला के योग प्राणायाम से आने वाला भविष्य को

0: में कितना समय दे सकता है, क्योंकि कुछ आसन जो आपने बताए
1: जी
0: अच्छी जिंदगी निरोग और स्वस्थ
1: प्रोसेस में हो जाएगा। अगर अच्छा खेलना चाहते हैं दौड़ना है, दौड़ने से फास्ट होना है, स्पीड बढ़ाना है, एनर्जी गेन करना है, तो योग में एक कंप्लीट पैकेज है।
0: कई बार देखा जाता है कि बच्चे पाठ याद करते हैं फिर भूल जाते हैं,
1: जी
0: क्या योग इसमें उनकी मदद कर सकता है?
1: पूरी तरह से उनको याददाश्त को ताजा करने के लिए योग से अच्छा पद्धति हो ही नहीं सकता है।
0: बिल्कुल।
1: ठीक है, उनके लिए याददाश्त को ताजा करने के लिए अर्ध कुर्मासन उपयोगी आसन माना
0: अर्ध
1: जाता है।
0: कुर्मासन,
1: अर्ध
0: उसमें क्या
1: कुर्मासन
0: किया जाता है?
1: देखिए, उसको दोनों पैर को फोल्ड करके उसमें बैठा जाता है, जैसे वज्रासन पोस्चर में,
0: अच्छा हाँ।
1: वज्रासन जो हजम करने के लिए जो खाने के बाद बैठते हैं, उसके बाद दोनों हाथ को लेके ऊपर उठा के नमन पोस्चर में जाता है। उसके बाद धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ झुकाता है, फोरहेड एंड नोज, कपाल एवं नाक को जमीन में लगाना है, हाथ को सीधा रखते नमन पोस्चर में रखना है। उसी तरह से रह के मन में आप 30 काउंट कीजिए, 30 गिनिए, उसके बाद धीरे धीरे में अपने पूर्वावस्था में आ जाए। इस समय आपका श्वास का गतिविधि नियंत्रण में रहेगी, यानी कि नॉर्मल जैसा आपका श्वास चल रहा है वैसे रहना है, कोई श्वास लेना है छोड़ना है उस पर अगर ध्यान लगाएंगे तो आप थोड़ा से मिसगाइड हो जाएंगे, इसलिए श्वास को स्वाभाविक रखते हुए पोस्चर करें। मुझे विश्वास है याददाश्त को ताजा करने के लिए काफी बच्चों के लिए उपयोगी माना
0: अर्ध
1: जाता है।
0: कुर्मासन,
1: अर्ध कुर्मासन, दिस
0: बिल्कुल
1: इज वेरी इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स,
0: हाँ, तो ये याददाश्त बढ़ाने में मदद
1: याददाश्त
0: करेगा।
1: बढ़ाना।
0: और एक बात है, यहाँ पर बच्चे जो हैं परीक्षा आते ही तनाव में आ जाते
1: जी
0: हैं, पढ़ाई अच्छी तरह होने के बाद भी, पाठ याद होने के बाद भी परीक्षा परिणाम के बारे में पहले ही सोच लेते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा फेल हो
1: जी जी
0: जाऊंगा,
1: जी
0: और इस टेंशन में कभी कभी क्या होता है, बहुत से बच्चे जो हैं सुसाइड भी कर लेते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं इतने कहना चाहूंगा, लड़ने से पहले हारना नहीं, मरने से पहले मरना नहीं। ठीक है, आत्मविश्वास को बनाए रखो, योग प्राणायाम एवं ध्यान करो, जीवन में ऐसा थॉट्स आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना ही जान जो बच्चों, डर का आगे ही जीत
0: जीत
1: है।
0: है। ये जो आपने कॉन्फिडेंस की बात की, आत्मविश्वास की, तो कौन से ऐसे आसन हैं जो
1: बच्चों का
0: आत्मविश्वास
1: आत्मविश्वास को बढ़ाता
0: डेवलप
1: है।
0: होगा?
1: जी,
0: हाँ
1: तो मुझे आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कौन ऐसा चीज है जिसमें आपको आत्मविश्वास में बढ़ोतरी
0: बिल्कुल
1: होती है?
0: हाँ,
1: ठीक है, देखिए, वृक्षासन एकाग्रता को तो बढ़ाता ही है,
0: वृक्षासन।
1: हाँ, साथ में आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो बच्चे
0: जैसे
1: आप
0: वृक्ष एक अटल खड़ा रहता
1: बस,
0: है ना?
1: ठीक है, जो वृक्ष आंधी तूफान और ठीक है
0: बिल्कुल
1: दिखता नहीं है, खड़ा रहता है, पुराना घास सब इतना 100 वर्षों से डिगा हुआ, कितना प्रकृति का नेचर का देखा, प्रकृति आपदा, लेकिन डटे रहता है। उसी तरह से आप भी डटे रहो, वृक्षासन करो और उसका लाभ लो।
0: तो एक बार आप बता दीजिए वृक्षासन कैसे करते
1: वृक्षासन,
0: हैं?
1: दोनों पैर में सीधा खड़े हो जाए, बाएं पैर को सीधा रखते हुए दाहिने पैर को फोल्ड करके पैर को मोड़ते हुए अपना थाइस के पास ले आए, और यानी कि आप एक पैर में खड़े हो रहे इस समय।
0: अच्छा
1: उसके बाद दोनों हाथ को नमन का पोस्चर में
0: नम
1: ले जाए और हाथ को सीधा ऊपर की तरफ उठाएं, यानी कि आप एक वृक्ष की तरह खड़े हैं, एक पैर में खड़े हैं, दूसरे पैर फोल्ड करके आप अपना थाइस में ले आए, दोनों हाथ को नमन का पोस्चर में ले जाए एवं हाथ को स्ट्रेट करके सीधा, कोहनी को सीधा करके आपका कान का बराबर ऊपर के आसमान की तरफ अपना हाथ को उठा कर रखें। इस तरह से इसमें काउंट करने का कितना देर करना है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको टारगेट जो है, लक्ष्य जो रहेगा, अपना सोल, जिस पैर में आप खड़े हैं उसके तलवे में आपका ध्यान रहेगी। अगर आपका मन इधर उधर हो रहा तो आप गिर जाएंगे, इसीलिए इसमें कितना देर करना है ये मन में नहीं आना चाहिए, छह घड़ी की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए।
0: ये हमें लगता है कि धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएगा।
1: आएगा और बहुत अच्छा आएगा, और साथ में एकाग्रता भी लाएगा और आत्मविश्वास भी लाएगा,
0: और पढ़ाई में मन भी लगेगा
1: मन बहुत अच्छा लगेगा।
0: तो बच्चे कर सकते हैं सुबह।
1: अगर वो 7 घंटा सो के एनर्जी पा रहे हैं, इसमें 6 घंटा पे सो के एनर्जी उतना ही पा लेंगे, तो उनका पास तो समय ही समय है।
0: बिल्कुल,
1: कम नींद लेके अगर एनर्जी ज्यादा मिल रहा है, सुबह उठने का जल्दी उठ जा रहा है, तो ये तो समय ही समय है।
0: बच्चे निरोग रहें
1: जी
0: स्वस्थ रहें,
1: जी
0: तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे,
1: मैं
0: योग
1: केवल
0: को अपनाकर वो
1: योग
0: कैसे?
1: अपनाए रोग भगाए, योग अपनाए मोटापा घटाए, स्वास्थ्य के बिना धन दौलत बेकार, योग अपनाए।
0: बच्चों के माता पिता से आप क्या कहेंगे?
1: मैं इतना ही कहूंगा, सभी बच्चों के माता पिता से मैं पहले उनको नमन करता हूँ, और ना केवल बच्चों को योग कराए बल्कि अपने भी योग करें, क्योंकि आप उदाहरण है। अगर आप उदाहरण बनेंगे तभी आप उदाहरण दे सकते हैं, अगर आप योग नहीं करेंगे तो फिर बच्चे को योग करने आप नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि योग को अपना लें और आने वाला भविष्य को सुनहरा बना लें।
0: जैसे हम योग कर रहे हैं तो क्या साथ में टहलना भी जरूरी है कि केवल योग
1: देखिए
0: करने से हो जाता है?
1: देखिए नहीं, टहलना तो बहुत अच्छा ही है, हमको भी मौका मिले हम भी थोड़ा टहल लेते हैं, लेकिन अगर आप टहल ले रहे थे, 10 मिनट टहल ले रहे, तो बॉडी ऐसे आपको वार्म अप हो जा रहा है, आके डायरेक्ट आप योग कर सकते हैं।
0: पहले टहल लें उसके बाद योग
1: हाँ,
0: करें।
1: जरूर जरूर जरूर, क्योंकि वो थोड़ा मूवमेंट वाला है, स्टडी वाला है।
0: बहुत से बच्चे हैं जो योग को अपने करियर में अपनाना
1: इससे
0: चाहते
1: अच्छा
0: हैं।
1: तो अभी कोई करियर है ही नहीं। मैं चाह रहा हूं बच्चों, आप अच्छा से योग करे, उसके बाद अच्छे से योग सीखे और योग को अपना करियर बनाने के लिए इससे अच्छा और कोई मेरे मुझे लगता है कि मैं भी टाटा स्लिम सर्विस करता था, मैं टाटा स्लिम रिजाइन करके इस लाइन में आके आज आपको सामने में

0: एक योग विशारद के नाते आपको मैं बता रहा हूं, आप हमारे बात को इसको ध्यान में रखें और आने वाले दिन को इसको एक करियर बनाएं, नेम फेम भारत का सेवा कर सकते हैं, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं।
1: योग ट्रेनर जो जरूरत है विदेशों में,
0: जी
1: आज यहाँ से बहुत से योग ट्रेनर जा
0: मेरा अपना शिष्य कम से कम 40 से ज्यादा, हमारा 18 देश में हमारा 40 से ज्यादा मेरा, मैंने अपने शिष्य को भेजे हैं जो वहां संभाल रहे हैं। मेरा ऐसा आज का दिन में 40 से ज्यादा विदेश में है, 18 देश में है मेरा शिष्य, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत, बहुत अर्न कर रहे हैं और आने वाला भविष्य को बहुत बहुत बहुत सुनहरा बना रहे हैं।
1: उम्मीद है कि योग का प्रचार प्रसार होगा
0: जी,
1: और बच्चे
0: हो रहा है और होगा,
1: तो वृहत रूप में होगा
0: जी, बहुत सुंदर।
1: तो योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है बच्चों, आपने जाना, तो हमें उम्मीद है कि ये जो हमने अभी बातचीत की बच्चों को पसंद आया होगा और वो अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। आप यहाँ आए, इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: योगासन और बच्चे, इस विषय पर योग गुरु अंशु सरकार से ली गई भेंट वार्ता बच्चों अभी आप सुन रहे थे।
1: और अब आइए सुनते हैं ये गीत।

बच्चों अब कुछ बातें ओलंपिक खेल से संबंधित। ओलंपिक विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसमें 200 से अधिक देशों के खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। ओलंपिक खेलों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल शामिल हैं। प्रत्येक खेल हर 4 साल में एक अलग देश में आयोजित किया जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल एक ही वर्ष में आयोजित होते थे। आज इनके बीच 2 साल का अंतर है। बच्चों आपको बता दें, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत लगभग 776 ईसा पूर्व ग्रीस में ओलंपिया पर्वत पर हुई थी, जो ग्रीक देवता ज्यूस को समर्पित थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत फ्रांस के बैरन पियरे डी कूपरटिन के प्रयासों से 1896 में एथेंस में हुई थी। तब से हर 4 साल में इनका आयोजन किया जा रहा है। 1800 के दशक के उत्तरार्ध में ओलंपिक खेलों का पुनरुद्धार हुआ। तब से शुरू हुए खेलों को आधुनिक ओलंपिक कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक में शामिल किए जाने वाले खेलों का चयन करती है और उन शहरों का भी चयन करती है जो खेलों

की मेजबानी करेंगे। आईओसी के अलावा प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है। बच्चों, ओलंपिक खेलों के ध्वज में सफेद पृष्ठभूमि पर 5 आपस में जुड़े हुए छल्ले हैं। ये छल्ले खेलों द्वारा एक साथ जुड़े विश्व के 5 भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। छल्ले नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के हैं। छल्लों और सफेद पृष्ठभूमि के रंग राष्ट्रीय ध्वजों से लिए गए हैं। इनमें से कम एक रंग प्रत्येक देश के ध्वज में मौजूद होता है। ओलंपिक खेलों का शुभारंभ उद्घाटन समारोह से होता है। प्रत्येक देश की टीम अपनी आधिकारिक वर्दी पहनकर ओलंपिक स्टेडियम में प्रवेश करती है। प्रत्येक समूह का नेतृत्व टीम का राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए एक खिलाड़ी करता है। ग्रीस की टीम हमेशा स्टेडियम में सबसे पहले प्रवेश करती है। अन्य देश मेजबान देश की भाषा के अनुसार वर्णमाला क्रम में प्रवेश करते हैं। मेजबान टीम हमेशा सबसे अंत में प्रवेश करती है। समारोह के दौरान ओलंपिक ध्वज फहराया जाता है। फिर मेजबान देश का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति स्टेडियम में मशाल लेकर आता है और उसे प्रज्वलित करता है, जिसे ओलंपिक लॉ कहा जाता है। इसके बाद धावकों की एक श्रृंखला मशाल को ग्रीस से मेजबान देश तक ले जाती है और ओलंपिक लॉ खेलों के समाप्त होने तक जलती रहती है। खेलों के दौरान प्रत्येक स्पर्धा के समापन के बाद विजय समारोह आयोजित किया जाता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए पदक प्रदान किए जाते हैं। प्रथम से तृतीय स्थान तक पदक क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य होते हैं। स्वर्ण पदक विजेता के राष्ट्रगान के साथ साथ विजेताओं के देशों के ध्वज फहराए जाते हैं। बच्चों, समापन समारोह अंतिम आयोजन के बाद होता है और ये उद्घाटन समारोह की तुलना में कम औपचारिक होता है। ओलंपिक मशाल बुझाई जाती है और ओलंपिक ध्वज को नीचे उतारा जाता है। खेलों के समारोह और आयोजन 16 दिनों तक चलते हैं। आपको बता दें, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों में अलग अलग मौसमों के अनुरूप विभिन्न खेल शामिल हैं। इनमें पुरुषों और महिलाओं के लिए व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाएं होती हैं। कुछ स्पर्धाएं इंडोर होती हैं, जबकि कुछ आउटडोर। ग्रीष्मकालीन खेलों में सबसे लोकप्रिय प्रतियोगिताओं में जिम्नास्टिक, तैराकी और ट्रैक एंड फील्ड शामिल हैं। अन्य प्रतियोगिताओं में बेसबॉल, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, ड्राइविंग, जूडो, नौकायान, फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, भारोत्तोलन और कुश्ती शामिल हैं। शीतकालीन खेलों के सभी खेल बर्फ पर खेले जाते हैं। आइस स्केटिंग और स्कीइंग दर्शकों के पसंदीदा खेल हैं। स्केटिंग स्पर्धाओं में आकर्षक फिगर स्केटिंग प्रतियोगिताएं और स्पीड स्केटिंग दौड़ शामिल है। आइस हॉकी एक लोकप्रिय टीम स्पर्धा है। भारत ने अपने पहले ओलंपिक खेल में हिस्सा लेते हुए 2 पदकों के साथ अभियान की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक भारत ने 25 ओलंपिक खेल में हिस्सा लेते हुए कुल 41 पदक जीते हैं, जिनमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक शामिल हैं। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने समय समय पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 1952 में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, जो स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत पदक था। उनकी उपलब्धि ने उस समय की युवा पीढ़ी को काफी प्रेरित किया था। 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता, जो किसी भारतीय महिला का पहला ओलंपिक पदक था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। बच्चों, 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक हासिल किए थे। सुशील कुमार और विजय कुमार को रजत पदक, जबकि मैरी कॉम, साइना नेहवाल, गगन नारंग और योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। बच्चों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा और उसने कुल 6 पदक जीते। इन पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो बच्चों, अभी हम ओलंपिक खेल से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हमने विश्व योग दिवस के अवसर पर योग के महत्व पर कुछ बच्चों से बातचीत हमने आपको सुनवाई। योग गुरु अंशु सरकार ने योगासन बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, इस पर
विस्तृत जानकारी दी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर ओलंपिक खेल के बारे में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता एस्थर चैम्पी। इसके साथ ही बच्चों आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। सीमा दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद बच्चों।

0: साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में बारी बारी से। 10:10 का वक्त होगा विश्व दर्पण समाचार का और 10:20 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। दिन में 11:05 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का और 12:05 पर होगा कार्यक्रम भावगीत। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
4: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
3: अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
4: विकसित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
3: इन पोतों का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा

0: जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्त चित्र, लघुकथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माही में भी मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 12th International Day of Yoga is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road, where thousands of people joined him in performing the morning exercises. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, June 21st, which marks the longest day in some parts of the earth, has now become largest community celebration day because of yoga.
2: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
1: The Prime Minister said yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group. It is an expression of human spirit. Since the inception of the International Day of Yoga in 2015, Mr. Modi has led celebrations from various locations, including New Delhi, Chandigarh, Lucknow, Mysuru, New York, Srinagar and Visakhapatnam. President Draupadi Murmu was chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event was held at Garrison Ground in Sadar. Meanwhile, several union ministers, organizations and eminent personalities are participating in yoga sessions across the National Capital Region to celebrate the 12th annual International Day of Yoga. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda attended the Yoga Day celebrations at Shantipath. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar participated in a yoga session at Nehru Park in New Delhi. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya also participated in the International Day of Yoga celebrations at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. Actor Akshay Kumar joined the sports minister in the yoga session. Special yoga programs were organized across Uttar Pradesh. Governor Anandibhen Patel performed yoga at Raj Bhavan. Chief Minister Yogi Adityanath led the yoga session at Jhansi Fort. Prime Minister Narendra Modi has dedicated three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination will be conducted today. It will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held in the afternoon from 2 to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Ahead of the examination, the National Testing Agency, NTA, conducted nationwide mock drill yesterday to verify all systems, jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. The NTA said it is fully prepared for smooth, fair and transparent conduct of the examination. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today urged students to take the exam without fear and wish them the very best. The Education Minister also assured that all necessary arrangements have been made for the smooth conduct of the examination. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. IMD also predicted heavy to very heavy rainfall at isolated places over Assam and Meghalaya till Thursday. The Met Department noted that the northeastern states are expected to receive fairly widespread to widespread rainfall till 26th of this month. India A takes on Sri Lanka A in the Tri-Series cricket final being played in Dambulla today. Smarting from an ill-tempered defeat in their previous match, India A will look to settle scores with Sri Lanka A in the final with teenage sensation Vaibhav Suryavanshi in the spotlight once again. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज़।

0: मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आज स्विट्जरलैंड में। सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए नॉर्वे में प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी। और फीफा विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह अब सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि योग हमें संतुलित जीवन जीने और मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग खोजने में मदद करता है।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: श्री मोदी ने योग को विश्व को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: देश के अलावा दुनिया में भी योग का जश्न देखने को मिला। सऊदी अरब में रियाद में कल 500 से अधिक प्रतिभागियों ने योग दिवस मनाया। कार्यक्रम में राजनयिकों, योगाचार्य और स्थानीय लोगों ने भागीदारी की। सऊदी योग समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल सादी ने कहा कि योग लोगों को स्वस्थ और अधिक संतुलित जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। कनाडा के टोरंटो में भी सरकारी प्रतिनिधियों, राजनयिकों और योगाचार्यों ने ओंटारियो विधानसभा परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में भागीदारी की। इस अवसर कनाडा में भारत के महावाणिज्य दूत ने कहा कि योग में सांस्कृतिक, भाषाई और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने की अनूठी शक्ति है। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया के नेतृत्व में विशेष योग सत्र हुआ। डेनमार्क में राजदूत मनीष प्रभात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन के नाम लिखा पत्र पढ़कर सुनाया। इसके अलावा अमरीका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
2: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कोलकाता में हैं और उन्होंने नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का राष्ट्र को समर्पित किया। इस समय वे कार्यक्रम को संबोधित भी कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत, देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
0: इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल संरक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उसने चेतावनी दी है कि संघर्ष न रुकने पर कोई उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। वार्ता में अमरीकी पक्ष का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और ईरान का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर खलीगाफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी स्विट्जरलैंड में होंगे। समझौते के तहत ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति जारी की जाएगी। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है। बड़े बच्चों की शिक्षा में भी इनके उपयोग को सीमित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जोनास गेहस्टेरे ने कहा है कि AI के उपयोग से छोटे बच्चों की शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण चरणों के छूट जाने का खतरा बढ़ रहा है। नॉर्वे सरकार ने परीक्षा के प्राप्तांकों में व्यापक गिरावट को देखते हुए 2024 में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका उद्देश्य सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले आत्मक प्रभाव को रोकना है। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। समाचार लिखे जाने तक भारत ए ने 3 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 55 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप की अगर बात की जाए तो जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स देश के ऐसे पहले नरेश बन गए हैं जो अपने व्यक्तिगत कर भुगतान का ब्योरा सार्वजनिक करेंगे। ये विवरण बृहस्पतिवार को साझा किया जाएगा। ब्रिटिश राजशाही के प्रशासनिक कार्यालय बकिंघम पैलेस ने कहा है कि ये पहल पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला ये महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्त चित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गई। विश्व ऊंट दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में श्री शेखावत ने कहा कि ऊंट केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि राजस्थान और गुजरात की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। उन्होंने ऊंट को मरुस्थल का जहाज बताते हुए इसके संरक्षण का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता की रेड रोड पर योगाभ्यास किया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आज स्विट्जरलैंड में। सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए नॉर्वे में प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी। और फीफा विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण समाचार श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:20 हो रहे हैं। फिल्म संगीत हम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। नमस्कार, जमशेदपुर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग श्रोताओं। आज के संगीतमय सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। और आज की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी, क्योंकि आज है 21 जून 2026। सुबह से कितने लोगों ने योगासन किया, सच सच बताइएगा। क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज कैलेंडर का वो पन्ना पलटा है जहां ब्रह्मांड की दो खूबसूरत शक्तियां एक साथ आकर गले मिल रही हैं। योग अगर शरीर की सांसों का अनुशासन है, तो संगीत उसी सांस की अभिव्यक्ति है। जी हाँ श्रोताओं, आज एक तरफ हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और दूसरी तरफ है विश्व संगीत दिवस। योग से हमारा मन थमता है और संगीत से हमारा मन झूमता है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि जब जंगलों में ध्यान लगाते थे, तो वे प्रकृति के संगीत को सुनते थे, जैसे झरनों की आवाज, हवा की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट। ये सभी भी तो संगीत ही है ना श्रोताओं। आज हमने उसी विरासत को आधुनिक रूप दे दिया है। चलिए इसी विरासत को सलाम करते हुए सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत सा ये गाना।

फिल्म हम साथ साथ हैं का ये ट्रैक श्रोताओं भी आपने सुना हरिहरन, प्रतिमा राव और संतोष तिवारी की आवाजों में संगीत बद किया है इस गीत को राम लक्ष्मण ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दीदी, नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
3: पर दीप,
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
4: अच्छा,
2: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

श्रोताओं, आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में यानी इस 2026 के हाईटेक एआई के दौर में लोग डिप्रेशन और एंग्जायटी से बचने के लिए वापस भारत के प्राचीन रास्तों पर लौट रहे हैं। इसे विज्ञान भी मानता है। आज साउंड हीलिंग और नाद योग पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। राग भैरव सुबह में बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है और रात की गहरी नींद लाने के लिए और तनाव को दूर करने के लिए ये रामबाण है। जब हम प्राणायाम करते हुए पीछे एक हल्का सा बांसुरी का संगीत चला लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल गायब हो जाता है और हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, यानी सेहत भी और साथ में सुकून भी। श्रोताओं, जब आसन थका दे शरीर को तो संगीत सहलाता है रूह को। योग और संगीत का ये वो संगम है जो मिटा देता है हर मर्ज की दुख को।

फिल्म वेकअप सिद का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना, कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ों में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है शंकर एहसान और लोई ने।

श्रोताओं, जितने भी लोग इस वक्त गाड़ियों में फंसे हैं या घर पर हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए। एक लंबी और गहरी सांस अंदर लीजिए और इस गाने के साथ अपने तनाव को अलविदा कहिए। आज 2026 में हम सिर्फ पुरानी बातों पर नहीं रुक सकते। आज की जेंजीज और मिलेनियल्स योग को एक नए चश्मे से देख रहे हैं। आजकल म्यूट योगा पुराना हो गया है और अब जमाना है सिंक्रोनाइज्ड योगा बीट्स और साइलेंट डिस्को योगा का। आपने देखा है, लोग कानों में वायरलेस हेडफोन लगा लेते हैं जहां आरजे या इंस्ट्रक्टर की आवाज के साथ डीप प्रोग्रेसिव हाउस म्यूजिक बजता है और उसी बीट पर सूर्य नमस्कार होता है। श्रोताओं, इसे कहते हैं इनोवेशन विद ट्रेडिशन और अब हमारे जेंजीज ऐसा ही कर रहे हैं। तो जब सुर बदलेंगे और सांसें मिलेंगी, तब थमेगा नफरतों का हर सांस।

फिल्म लुटेरा का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना शिल्पा राव की आवाज में। वो लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और श्रोताओं आज के इस खास दिन पे एक और खास दिन जुड़ा हुआ है, मतलब 21 जून जो है वो हमारे डायरी में बहुत सारी यादों का कारवां लेकर आया है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दूसरी तरफ विश्व संगीत दिवस और तीसरी तरफ जून महीने का ये तीसरा रविवार और आज हम मनाते हैं फादर्स डे। हालांकि कोई एक दिन पिता के लिए तो बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आज के दिन को उनके लिए स्पेशल बनाते हैं जिन्होंने हमारे हर दिन को स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमारे जीवन के सबसे मजबूत स्तंभ। चलिए आज इन्हें धन्यवाद करते हैं जिन्हें हम पिता कहते हैं। एक पिता का प्यार अक्सर माँ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका त्याग, अनुशासन और परिवार के लिए किया गया संघर्ष बेजोड़ होता है। वे अपनी खुशियों को किनारे रखकर बच्चों के सपनों को उड़ान देते हैं और हर मुश्किल घड़ी में एक ढाल बनकर खड़े रहते हैं। आज के दिन सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे।

0: मैं प्रेम की दीवानी हूँ। इस फिल्म का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना सुनिधि चौहान और करीना कपूर की आवाजों में। वो लिखे हैं देव कोहली ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: चाल चाल और तेज भाग बबीता।

0: छोरों को पीटना की इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी।
1: काली तो उसने मने दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की जरूरत थी है?
0: अब बता रही है

0: तो जो भी कहेगी सब कराएंगे,
1: बस इस पहलवानी से बचा ले।
2: साल भर के लिए भूल जाओ कि थारी कोई माँ है।
3: रे इतनी जल्दी भूलगी?
4: जो के बात कर रहा है माँ भी, छोरियाँ और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवा देगा के।

सरवर खान और सतास खान बरना की आवाज़ों में फिल्म दंगल का ये ट्रैक श्रोताओं अभी आपने सुना। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और धुन बनाई है प्रीतम ने। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: फिल्म जानवर के इसी गीत के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दीपिका को अनुमति। नमस्कार, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। ये आकाशवाणी का दिल
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पोत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।
2: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस दुनागिरी, अग्रय और संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पोत अब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
1: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

Hood. नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम के साथ आज मैं रंजना, श्रोताओं नमस्कार। आप सभी को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संपूर्ण विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय केवल एक वार्षिक अभियान नहीं है, बल्कि बदलती जीवन शैली का बहुत ही खास परिणाम है। आधुनिकता की दौड़ और नियंत्रित जीवन शैली के बीच आज की सबसे बड़ी चुनौती खुद को निरोग रखना है। इस चुनौती से निपटने और स्वस्थ जीवन के लिए योग के मूल मंत्र को चरितार्थ करना बहुत ही जरूरी है। योग केवल शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन विज्ञान है, जो असाध्य से असाध्य बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। कई लोगों ने नियमित योगाभ्यास और प्राणायाम

नाम से असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त की है। हमारा शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से पोषित होता है। जब हम योग करते हैं तो हमारी सांसें हवा के प्रवाह से, हमारा संयम प्रकृति के धैर्य से और हमारा स्वास्थ्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है।

सच में जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसलिए तो हमें अच्छे से जीना चाहिए और अच्छा जीवन हमें अच्छे स्वास्थ्य से मिलेगा, और अच्छा स्वास्थ्य तभी होगा जब हम योग करेंगे। अंदाज फिल्म का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन के धुन पर बोल थे हसरत जयपुरी के। श्रोताओं, योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे किसी भी उम्र में व्यक्ति कर सकता है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी अपनी क्षमता के अनुसार योग कर सकते हैं। प्राणायाम, ध्यान और विभिन्न योगासन हमारे जीवन को अधिक संतुलित और ऊर्जावान बनाते हैं। प्रतिदिन कुछ मिनट योग करने से हमारा शरीर लचीला बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मन शांत रहता है। योग हमें अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास भी सिखाता है। यह हमें केवल स्वस्थ नहीं बनाता बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करता है। आज पूरी दुनिया भारत की इस महान परंपरा को अपना रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि योग ने विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम किया है। योग हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सच्ची सफलता की नींव है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के धुन पर। आप सुन रहे थे सरगम फिल्म का ये गीत, बोल थे आनंद बख्शी के। श्रोताओं, योग आज केवल स्वास्थ्य और फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि तेजी से उभरता हुआ करियर विकल्प भी बन चुका है। योग प्रशिक्षक, योग चिकित्सक, योग शोधकर्ता, वेलनेस सलाहकार, योग शिक्षक और योग उद्यमी के रूप में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। हमारे देश में कई प्रतिष्ठित संस्थान योग शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे पुणे में अयंगार योग संस्थान, लोनावला में वैकल कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट, मुंबई में द योग इंस्टीट्यूट, ईशा फाउंडेशन के द्वारा श्री श्री योग, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बिहार योग भारती, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय। इनमें नामांकन के लिए जरूरी योग्यता है 12वीं के बाद प्रमाण पत्र या डिप्लोमा पाठ्यक्रम से शुरुआत की जा सकती है। स्नातक स्तर पर योग विज्ञान में डिग्री प्राप्त की जा सकती है। उच्च शिक्षा के लिए पीजी, पीजी डिप्लोमा और पीजी पीएचडी के विकल्प भी उपलब्ध हैं।

श्रोताओं, आवश्यकता है कि हम योग को केवल 21 जून तक सीमित न रखें, योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने परिवार, विशेषकर बुजुर्गों, युवाओं, बच्चों को योग से जोड़ें। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला योग ही बन सकता है। एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

हम आपके हैं कौन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में राम लक्ष्मण के धुन पर। गीतकार थे देव कोहली। हम आपके हैं कौन इस फिल्म में माँ का किरदार निभाया था रीमा लागू ने। श्रोताओं, आज उनका जन्म दिवस है। रीमा लागू एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने माँ के किरदार को नई पहचान दी और अपने अभिनय से हर घर में अपनी एक अलग जगह बनाई। जब भी रीमा लागू का नाम लिया जाता है लोगों के मन में एक स्नेहमयी, समझदार और त्यागमयी माँ की छवि उभर कर सामने आती है। उन्होंने बॉलीवुड में माँ के कई यादगार किरदार निभाए। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनके अभिनय में एक अपनापन था जो सीधे दर्शकों के दिल को छू जाता था। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया जिनमें मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, साजन, कल हो न हो, हम साथ साथ हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

श्रोताओं, आज है 21 जून, साल का सबसे बड़ा दिन। आमतौर पर 12 घंटे का दिन और रात होता है, लेकिन 21 जून यानी आज सूरज इससे भी ज्यादा समय के लिए निकलता है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के अक्ष पर झुकी हुई है और 21 जून के दिन पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ अपने अधिकतम झुकाव पर होता है। इसीलिए सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा पर सीधे 90 डिग्री के एंगल से पड़ती है। इसीलिए सूरज ज्यादा समय तक निकलता है। ऐसा सिर्फ 21 जून के दिन ही होता है। 21 जून की इस घटना को समर सोल्स्टिस कहा जाता है, यानी ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का लैटिन शब्दों सोल और सिस्टेरे यानी स्थिर होना से आया है, जिसका अर्थ होता है सूरज का स्थिर होना। इसी तरह से 21 या 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है।

जीवनधारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाज में, बोल थी आनंद बख्शी की, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर, आकाशवाणी जमशेदपुर से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि वर्षा पर आधारित होती है, और वर्षा ऋतु यानी मॉनसून की शुरुआत हम आद्रा नक्षत्र से मानते हैं, जो कि 22 जून यानी कल से शुरुआत हो रही है, और सूर्य करीब 15 दिनों तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र यानी आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, पानी बरसने के साथ मौसम में आर्द्रता आ जाती है, और बारिश के मौसम में हमें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो अभी से हम इसकी तैयारी कर लें। जैसे बारिश के दौरान बिजली जाना आम बात है, इसीलिए घर में अच्छी टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियां जरूर रखें। रिचार्जेबल इमरजेंसी लैंप और चार्ज होने वाले LED बल्ब लगाएं। पावर बैंक को हमेशा फुल चार्ज रखें ताकि जरूरत पड़ने पर मोबाइल चार्ज कर सकें। अचानक वोल्टेज बदलने से इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाते हैं, इसीलिए सर्ज प्रोटेक्शन वाला एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल करें। इस मौसम में मच्छर का संक्रमण बढ़ जाता है, मच्छर भगाने वाले कॉइल लिक्विड रेपेलेंट जरूर रखें। प्राथमिक उपचार किट में पट्टी, एंटीसेप्टिक और दवा होनी चाहिए, साथ ही ORS के पैकेट, हैंड सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट भी जरूर रखें।

कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे बरसात फिल्म का। बोल थी समीर के, संगीत दिया था नदीम शवन ने। वो इंसान जो अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं करता, लेकिन अपने पूरे जीवन से हमें प्रेम, सुरक्षा और जिम्मेदारी का अर्थ सिखाते हैं। श्रोताओं, वो कौन है? फादर। आज का दिन है फादर्स डे, यानी हमारे पिताजी को सम्मान और धन्यवाद देने का दिन। पिता घर की वह खामोश छांव है जो खुद धूप सहकर हमें सुकून देते हैं। वो माँ की चुप्पियों की चाबी, बच्चों के सपनों के रक्षक और जीवन की अनकही ताकत हैं, जिन्हें हम अक्सर देर से समझ पाते हैं। वही हमारे जीवन की मजबूत नींव हैं, जिन पर हमारा पूरा भविष्य खड़ा होता है। वे एक पेड़ की तरह होते हैं जो खुद धूप, बारिश और कठिनाइयों को सहते हैं और हमें छाया और सुरक्षा प्रदान करते हैं। कई बार हम माँ के प्यार को आसानी से महसूस कर लेते हैं, लेकिन पिता का प्यार उनके त्याग, मेहनत और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। पिता अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। वह अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है ताकि उसके बच्चों के सपने पूरे हो सके। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, पिता हमेशा परिवार की ताकत बनकर खड़े रहते हैं। आज का दिन केवल पिता को उपहार देने का दिन नहीं है, यह दिन अपने पिता को यह महसूस कराने का दिन है कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एक छोटा सा धन्यवाद, एक प्यार भरी मुस्कान, उनके साथ कुछ समय बिताना या उनके लिए कुछ अच्छा करना ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में। राजशेखर के लिखे इस गीत को संगीतवत किया था हर्षवर्धन रामेश्वर ने। श्रोताओं, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो चलते चलते कुछ स्वास्थ्य की बातें करते चले। पैनिक अटैक आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन शैली का एक उपहार है। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति अचानक अत्यधिक डर, घबराहट और बेचैनी महसूस करने लगता है। इसके कारण है, सबसे अधिक 30 से 40 वर्ष के वयस्कों में यह देखा जाता है। हालांकि यह 6 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चों में भी हो सकता है। मस्तिष्क में सेरोटोनिन और गावा जैसे न्यूरोट्रांसमिशन के असंतुलन इसके कारण हो सकते हैं। साथ में घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा का अनुभव भी एक कारण है। दुर्घटना, प्रियजन की मृत्यु या किसी अन्य बड़ी घटना से जुड़ा मानसिक आघात भी इसके कारण हो सकते हैं। इसके उपचार हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे प्रभावी मानी जाती है। इसमें व्यक्ति नकारात्मक विचार और भय को पहचानना तथा नियंत्रित करना सीखता है। एक्सपोजर थेरेपी में व्यक्ति को धीरे धीरे उन परिस्थितियों का सामना करना सिखाया जाता है जिनसे उन्हें डर लगता है। इसके बचाव के उपाय ही सबसे अच्छा है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, घबराहट पैदा करने वाले ट्रिगर्स को पहचानें, अपनी समस्याएं परिवार, मित्रों, विशेषज्ञों से साझा करें, सोच और व्यवहार में लचीलापन विकसित करें, नियमित व्यायाम, योग, ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, लंबे समय तक अकेले रहने या यात्रा करने से बचें, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता दें, भरपूर नींद लें,

ये थी लाशिकाना फिल्म का ये गीत। आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, समीर की रचना थी, नदीम श्रवण का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर संपन्न हुआ।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भावगीत। दिल में हसरतें जो हैं उसे तराने बनाकर ये लब बोल पड़े हैं कि वजह तुम ही तो हो हमारे दिल के सुनहरे अरमान के। आंखों में झिलमिलाती सपने सजाने की वजह तुम ही तो हो। मस्त ऊंची ऊंची उड़ाने दिल में हिलोरे ले रही है क्योंकि दिल में तुम्हारी चाहतों की हवाएं गुनगुना रही है।

मुस्कान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज में, बोल थी समीर के निखिल विनय ने धुन बनाई थी। नैनों के बार को बस पूछिए मत क्या कहा जाए, नजरें आईना भी है जिसमें दिख जाती है चेहरे की रंगत और चेहरे में छिपे भावनाएं भी। नजरें किताबें भी हैं जिसमें आसानी से पढ़ा जा सकता है, धीरे धीरे ही असर डालती है ये नजरें दिल पर, खींच के तस्वीर को।

काश किसी के तरानों में हमारी कहानियां होती, किसी के गुलशन में हमारी चाहत के फूल होती, और जिसकी बागवान के हर एक फूल पर हमारा हक होता। काश कोई होता जिसे अपनी कहानियां सुनाती, जिसके दिल में हमारी तमन्नाएं होती।

हम हैं राही प्यार के, इस फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में, नदीम श्रवण के धुन पर, बोल थी समीर के। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसे बयान करके जरूरत नहीं होती, बल्कि निगाहें खुद ब खुद इसे बयां कर देती है। छुपाने की कोशिश में ज्यादा ही दिखाई दी जाती है नजरों में, भुलाने की कोशिश में कुछ दिल ज्यादा ही याद करने लगता है।

मन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। समीर की रचना थी, संजीव दर्शन ने संगीत दिया था, युगल स्वर थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भावगीत यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम अंगना।

अंगना के सभी श्रोताओं को दोस्त और बहन जयश्री का प्यार भरा नमस्कार जोहार। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस विशेष अवसर पर स्कूल कॉलेजों से लेकर घर और संस्थानों तक हर जगह हर किसी ने योग करने की कोशिश की और ये कोशिश ही अपने आप में एक माइलस्टोन है इस बात के लिए कि हम अपनी जीवन शैली को स्वस्थ और सकारात्मक दिशा देने का संकल्प ले रहे हैं और इससे बेहतर कोई संकल्प हो भी नहीं सकता। बहनों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान और मानसिक तनाव के बीच योग हमारे लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। बहनों, एक खराब जीवन शैली कई आधुनिक बीमारियों जैसे कि डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर की जड़ है। अगर हम योग करते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं तो जीवन में एक स्वस्थ अनुशासन आता है और ये आपको समय पर उठने और अपने शरीर को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। योग से आत्म जागरूकता बढ़ती है जिससे आप अपने शरीर की जरूरतों को बेहतर समझते हैं और अस्वस्थ खानपान यानी कि जंक फूड से दूरी बनाने लगते हैं। अगर आप अनिद्रा या अधूरी नींद से परेशान हैं तो शवासन या भ्रामरी प्राणायाम जैसी क्रियाएं आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं जिससे गहरी और सुकून भरी नींद आती है। बहनों, योग कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। एक स्वस्थ शरीर ही कुशल कार्य कर सकता है। बहनों, अगर हम योग करते हैं, आसन करते हैं जैसे कि ताड़ासन, भुजंगासन, तो ये शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और रीढ़ की हड्डी को लचीला रखते हैं जिससे उठने बैठने का तरीका सुधरता है। प्राणायाम और आसनों के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है जो अंगों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। सुबह मात्र 20 से 30 मिनट का योग बहनों आपके पूरे दिन की ऊर्जा स्तर को बढ़ा देता है जिससे थकान महसूस नहीं होती। आज के युग में शारीरिक स्वास्थ्य जितना महत्वपूर्ण है ना बहनों, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य भी है और उसके लिए भी हमारा जो योग है बहुत सहयोगी है। प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति और ध्यान मस्तिष्क में कार्टिसोल यानी कि तनाव हार्मोन के स्तर को कम करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करता है जिससे हमें तनाव से मुक्ति मिलता है ना। और छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए तो योग वरदान ही है। ये फोकस बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करता है और नकारात्मक विचारों को दूर रखता है यानी एकाग्र

0: एकाग्रता और अस्पष्टता लाता है हमारे मस्तिष्क में। बहनों, योग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं है, ये जीने की एक कला है और स्वयं से स्वयं की मुलाकात का माध्यम है। आज इस योग दिवस पर आपने बेशक संकल्प लिए होंगे, लेकिन फिर भी हमारे साथ भी संकल्प लें कि हम केवल आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट योग को देंगे। शुरुआत छोटे और सरल आसनों से करें। याद रखिए, एक स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत आपके द्वारा उठाए गए आज के छोटे से कदम से ही होगी। जिस तरह 21 जून का सूर्य दुनिया का सबसे ज्यादा ऊर्जा और प्रकाश देता है, उसी तरह योग का निरंतर अभ्यास जीवन में प्रकाश और ऊर्जा भरता है। तो आप सब भी योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। अपने जीवन में योग के महत्व को स्वीकार भी कीजिए और इसे महत्व भी दीजिए। और आज है तीसरा रविवार, तो आइए सुनते हैं चंद कविताएं कवित्री सोनी सुगंधा से।
1: नमस्कार। लोगों के कहने पे मेरे आगे तो आ जाती है, लोगों के कहने पे मेरे आगे तो आ जाती है, लेकिन लगने से पहले ठोकर मुझसे घबराती है, लेकिन लगने से पहले ठोकर मुझसे घबराती है। ऐ दीपक, तुम अंधियारे से अब लोहा ले सकते हो। ऐ दीपक तुम अंधियारे से अब लोहा ले सकते हो। साथ तुम्हारे, साथ साथ तुम्हारे, तेल बिना भी जलने को यह बाती है। साथ तुम्हारे, तेल बिना भी जलने को यह बाती है। बच्चों ऐसी वैसी चीजें, बच्चों ऐसी वैसी चीजें, खाने की अब उम्र गई। बच्चों ऐसी वैसी चीजें, खाने की अब उम्र गई। पूछो ढाबे में जाकर क्या मल्टीग्रेन चपाती है। पूछो ढाबे में जाकर क्या मल्टीग्रेन चपाती है। आजकल मल्टीग्रेन बच्चे भी समझने लगे हैं। उसी पर, उसी अंदाज में, उसी ख्याल को लेके मैंने इस शेर को कहने की कोशिश की है कि बच्चों ऐसी वैसी चीजें खाने की अब उम्र गई। बच्चों ऐसी वैसी चीजें खाने की अब उम्र गई। पूछो ढाबे में जाकर क्या मल्टी ग्रेन चपाती है। पूछो ढाबे में जाकर क्या मल्टी ग्रेन चपाती है। जिसकी ज्योति में भेजी मैंने तुमको नाइट ड्यूटी पर। अपने हवाले से ये शेर कहने की कोशिश की है कि जिसकी ज्योति में भेजी मैंने तुमको नाइट ड्यूटी पर, मेरे सुने हाथों में अब तक वो संझा बाती है। मेरे सुने हाथों में अब तक वो संझा बाती है। पंडित जी क्यों बोल रहे थे 15 वर्ष रहेगी और, पंडित जी क्यों बोल रहे थे 15 वर्ष रहेगी और, आखिर यह मेरे जीवन की, आखिर यह मेरे जीवन की कैसी 7.5 है। आखिर यह मेरे जीवन की, जिन विपदाओं को, जिन आपदाओं को लोग झेलते हैं, उन आपदाओं को अपने जहन में रख के इस शेर को कहने की कोशिश की है कि जिसकी जोत में भेजी मैंने तुमको नाइट ड्यूटी पर, मेरे सुने हाथों में अब तक वो संझा बाती है। पंडित जी क्यों बोल रहे थे, पंडित जी क्यों बोल रहे थे 15 वर्ष रहेगी और, आखिर यह मेरे जीवन की कैसी 7.5 है। बिन मंगल रवि शुक्र गुरु के तू सब कुछ पा जाएगा। बिन मंगल रवि शुक्र गुरु के तू सब कुछ पा जाएगा। तेरे हाथों की रेखा में, तेरे हाथों की रेखा में बैठी ठकुर सुहाती है। तेरे हाथों की रेखा में बैठी ठकुर सुहाती है। जिस पर सर रखते ही सोनी नींद मुझे आ जाती थी। जिस पर सर रखते ही सोनी नींद मुझे आ जाती थी। मेरे बेटे की भी, मेरे बेटे की भी अब वैसी ही चौड़ी छाती है। मेरे बेटे की भी अब वैसी ही चौड़ी छाती है। मेरे बेटे की भी अब वैसी ही चौड़ी छाती है। और आइए दूसरी रचना आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। हम जिस समाज में जीते हैं, जिस हालात में जीते हैं, उन हालात को आप सबके सामने रखने की कोशिश। अभी आठों पहर मेरी तरफ है। अभी आठों पहर मेरी तरफ है। जमाने की नज़र मेरी तरफ है। अभी आठों पहर मेरी तरफ है। जमाने की नज़र मेरी तरफ है। मुझे ही नापना है लंबा रास्ता। तुझे ही नापना है लंबा रास्ता। मगर टूटी डगर मेरी तरफ है। मगर टूटी डगर मेरी तरफ है। मेरे ही साथ बहती थी ये धारा। मेरे ही साथ बहती थी ये धारा। अभी उल्टी लहर मेरी तरफ है, अभी उल्टी लहर मेरी तरफ है, कई नजरें तो ये भी देखती हैं, कई नजरें तो ये भी देखती हैं, यहाँ किसकी नजर मेरी तरफ है, यहाँ किसकी नजर मेरी तरफ है, भले ही चांदनी तेरी तरफ हो, भले ही चांदनी तेरी तरफ हो, मगर बादे सहर मेरी तरफ है, मगर बादे सहर मेरी तरफ है, हितैषी लोगों से जानी है मैंने, हितैषी लोगों से जानी है मैंने, कि किसकी बद नजर मेरी तरफ है, कि किसकी बद नजर मेरी तरफ है, करूं क्या इन दिनों मेरा ही सावन, करूं करूं क्या इन दिनों मेरा ही सावन, फकत एक बूंद भर मेरी तरफ है, नदी हूँ मैं मुझे क्या खाक सोनी, नदी हूँ मैं मुझे क्या खाक सोनी, मेरा साहिल अगर मेरी तरफ है, मेरा साहिल अगर मेरी तरफ है। आइए एक गज़ल आपके खदमत में पेश करती हूँ, कि बड़ी होते ही दुख्तर काटती है, बड़ी बड़ी होते ही दुख्तर काटती है, वो माँ की बात अक्सर काटती है, वो माँ की बात अक्सर काटती है, कसाई की तरह वितरण प्रणाली, बड़ी होते ही दुख्तर काटती है, वो माँ की बात अक्सर काटती है, कसाई की तरह वितरण प्रणाली, भरी गर्मी में पावर काटती है, भरी गर्मी में पावर काटती है, कोई चक्कर है सूरज से जमी का, कोई चक्कर है सूरज से जमी का, उसी चक्कर में चक्कर काटती है, उसी चक्कर में चक्कर काटती है, शबे गम में अकेली जान समझकर, शबे गम में अकेली जान समझकर, मुझे बिस्तर की चादर काटती है, मुझे बिस्तर की चादर काटती है, ये काली रात है मेरे ही जैसी, सहर तक वक्त जग कर काटती है। अगला शेर देखे, कोई बेवा बदन ढकने की खातिर, कोई बेवा बदन ढकने की खातिर, अभी भी सूत दिन भर काटती है, अभी भी सूत दिन भर काटती है, फकत बालिश्त भर बटुए की खातिर, मुट्ठी भर, फकत बालिश्त भर बटुए की खातिर, तुसोनी थान गज भर काटती है, तुसोनी थान गज भर काटती है, तुसोनी थान गज भर काटती है। आइए कुछ तरह में बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। दोस्त कह

जो कसम सोनी खाती नहीं, जो कसम सोनी खाती नहीं,

0: धन्यवाद।
1: सोनी सुगंधा की रचना उनकी ही खूबसूरत आवाज में बहनों अभी आप सुन रही थी। और बहनों आप तो जानती ही है ना कि हमारे जीवन में बहुत सी चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों का हम सामना कैसे करते हैं ये भी देखने की बात होती है। हमेशा परिस्थितियां आसान नहीं होती। कहानी अंतिम यात्रा लेकर आई है कहानीकार रूबी लाल, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, मेरा नाम रूबी लाल है और मैं अपनी कहानी साझा कर रही हूँ अंतिम यात्रा। यात्रा, यात्रा कितना सुखद शब्द है। पेड़, पौधे, पहाड़, झरने, नदियाँ भागती ट्रेन के साथ मानो वे भी चल रहे होते हो। यात्रा यदि हवाई जहाज की हो तो बात ही निराली है। आकाश में बादलों की सैर कितना विहंगम, कितना मधुर, मन प्रफुल्लित हो जाता है ना। बैलगाड़ी की यात्रा के तो अपने अलग ही मजे हैं। हिचकोलों के बीच बैलों के मधुर घंटी की धुन का अलग ही आनंद है। घोड़े पर यात्रा कर रहे हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे घोड़ा ही नहीं हम भी उसके साथ साथ भाग रहे हो, हम ही दौड़ रहे हो। इन सबसे अलग एक और यात्रा है, जीवन यात्रा। कभी खुशी, कभी गम, उतार चढ़ाव, जीवन की अनियमितताएं, कब क्या होगा पता नहीं, फिर भी अविरल अविराम चलने वाली यात्रा। और इस यात्रा के यात्री हम सभी। ऐसे ही एक यात्रा की प्रस्तुति कहानी की नायिका पूजा सिंह। पूजा की उम्र यही कोई 30-35 के आसपास, दो बच्चे, सास ससुर, पति, भरा पूरा परिवार था पूजा का। ससुर जी रिटायर्ड हैं, बीमारी नहीं है पर उम्र के कारण कमजोरी है। सास की भी उम्र हो जाने के कारण वह भी थोड़ी दिक्कत से उठ बैठ पाती है। पूजा के पति का गाड़ियों का बिजनेस होने के कारण वह घर में समय कम दे पाते हैं। दोनों बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल का पूरा जिम्मा पूजा के ही कंधों पर है। पूजा के एक जेठ हैं जो कि अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ दिल्ली में रहते हैं। सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर कार्यरत होने के कारण उनकी घर में आने जाने की थोड़ी कम ही व्यवस्था रहती है, क्योंकि वो जब भी आते हैं तुरंत चले जाते हैं। मिला जुला कर एक खुशहाल और समृद्ध परिवार था पूजा का। इधर कुछ दिनों से पूजा के ससुर जी को भूलने की बीमारी हो गई थी। इस कारण पूजा को उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता था। थोड़ा भी ध्यान हटता तो वे घर के बाहर चले जाते और फिर घर आने का रास्ता भी भूल जाते। उन्हें ढूंढने जाना होता। आंखों में मोतियाबिंद के कारण पूजा की सास को बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, वो नहीं जा पाती। उनको ढूंढने भी पूजा को ही जाना पड़ता था। इन सब परेशानियों के बीच पूजा अपनी सास के आंख के ऑपरेशन के बारे में सोच ही रही थी कि कब कराऊं, कैसे कराऊं। तभी बार बार पूजा के मायके से उसकी माँ की बीमारी की खबर आ रही थी। पूजा जो 2 साल से अपने मायके भी नहीं गई थी, घर की व्यस्तता इतनी थी कि वह अभी भी चाहकर भी मायके नहीं जा पा रही थी। माँ को देखना तो चाह रही थी पर मौका ही नहीं मिल रहा था। अचानक एक दिन खबर आता है कि उसकी माँ को कैंसर हो गया है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो जाती है। उसका भाई रवि रो रोकर फोन पर पूजा से बता रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं इलाज के लिए अब बाहर ले जाइए। रो रोकर बार बार अपनी बहन को अपने पास बुलाने की गुजारिश कर रहा था। कह रहा था आ जाओ आ जाओ, अब माँ ज्यादा दिन नहीं बचेगी, कब क्या हो जाए पता नहीं, मैं यहाँ अकेला हूँ, तुम साथ रहोगी तो मुझे ठीक लगेगा। पूजा ने भाई को समझा बुझा कर चुप कराया, कहा कि थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। पूजा असमंजस में फंसी सोचकर परेशान हो रही थी कि क्या करे, कैसे जाए, और अगर मायके चली जाऊं तो फिर यहाँ का क्या। ना भाई को छोड़ना चाह रही थी, ना ही वह सास ससुर को छोड़ना चाह रही थी। पूजा के पति जो कि बाहर से 2 दिन के बाद थके हारे घर आए हैं, उनको पानी देते हुए पूजा रो पड़ती है। पूजा के पति संजय पूजा को इस अवस्था में देखकर परेशान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ। पूजा रोते रोते सारी बात बताती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संजय जी पूजा को उसी पानी के ग्लास से जो पूजा उनके लिए लाई थी पानी पिलाते हैं और उसको सांत्वना देते हुए एक और बिठा देते हैं। पूजा अब भी रो रही थी। तभी संजय जी को ध्यान आता है कि अपने शहर में तो कैंसर हॉस्पिटल है और वह पूजा से कहते हैं कि वह उसकी माँ को यहीं ले आते हैं, जिससे अच्छा इलाज भी हो जाएगा और अपनी माँ और अपना घर दोनों का ध्यान भी रख पाएगी। पति की ये बातें सुनकर पूजा को थोड़ा आत्मबल मिलता है और वह तुरंत अपने भाई को फोन करती है और कहती है भाई माँ को लेके यहीं आ जाओ। दूसरे दिन ही सारी व्यवस्थाएं होती है और पूजा का भाई सड़क मार्ग से माँ को लेकर आ जाता है। उनको शहर के मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पूजा सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाती है और अस्पताल जाती है, माँ की देखभाल करती है। घर और अस्पताल दोनों जगह पूजा अपनी माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। समर्पित भाव से वह घर और अस्पताल में माँ दोनों की सेवा कर रही थी। पूजा के मायके की पड़ोसी मुक्ता, जिसकी शादी पूजा के ही शहर में हुई है, इस खबर को सुनकर वह पूजा की माँ को देखने आती है। पूजा की माँ की हालत एक तरह से कहे तो नाजुक ही थी, इसलिए मुक्ता हर रोज पूजा की माँ को देखने आने लगी। इलाज अच्छा हो रहा था, पर पूजा और रवि दोनों अपनी माँ की खूब सेवा देखभाल कर रहे थे, पर फिर भी वही हुआ जिसका अंदेशा था। पूजा चाह कर भी अपनी माँ को नहीं रोक पाई और उनका स्वर्गवास हो गया। मुक्ता ने जब यह सुना तो वह भी दौड़ी दौड़ी आई। पूजा और उसका भाई जार बेजार रो रहे थे। मुक्ता दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, तभी मुक्ता का ध्यान बार बार बज रहे पूजा के फोन पर जाता है। पूजा फोन उठाने के हालत में नहीं थी, फिर भी मुक्ता पूजा से कहती है, उठा लो, फोन तुम्हारी जेठानी का है, वह भी परेशान हो रही होंगी। इस पर पूजा कहती है, मैंने रात उनसे कहा था कि माँ की हालत तो ठीक नहीं है, अब मुझे माँ को पूरा समय देना होगा और उन्होंने कहा था कि वह आज यहाँ आने के लिए निकलेंगी, तुम ही उनको यह खबर दे दो, मेरी तो हिम्मत नहीं है। बार बार बज रहे फोन को मुक्ता जैसे ही उठाती है, उधर से एक चार बेजार रोती हुई आवाज आती है, पूजा मेरा सब खत्म हो गया, पूजा मेरा सब खत्म हो गया। मुक्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उधर से फोन में किसी पुरुष की आवाज आने लगती है। चाची चाची, सुनकर मुक्ता टोकते हुए कहती है, आप पूजा के जेठ के बेटे बोल रहे हैं क्या? मैं चाची नहीं, मुक्ता आंटी बोल रही हूँ, यहाँ तुम्हारी चाची के का निधन हो गया है और पूजा की हालत ठीक नहीं है, इसलिए फोन मैंने उठाया है। इस पर उधर से आवाज आती है, ओह ये क्या हो गया, मेरे परिवार में एक दिन एक समय में दो दो मौत? यह कहते हुए उसकी आवाज भारी हो जाती है। मुक्ता भी यह सुनकर हड़बड़ा जाती है, दो दो मौत, ये दूसरा कौन है? वह हड़बड़ाते हुए फोन पे कहती है। उधर से पूजा के जेठ के बेटे बंटी की रोती हुई आवाज आती है, आंटी पापा पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुक्ता बड़े ही गंभीर आवाज में पूछती है, बेटा ये कैसे हो गया? बंटी भी रुंधे गले से बोलता है, आंटी सुबह पापा उठकर बाथरूम गए थे, बाथरूम से जोर की आवाज़ सुनकर हम लोग गए तो देखा कि पापा जमीन पर गिर गए हैं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हम सब तुरंत उन्हें अस्पताल ले ही जा रहे थे कि उनका शरीर शिथिल पड़ गया। जब पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे बात करते हुए बंटी बताता है कि आंटी हम लोग पापा के पार्थिव शरीर को लेकर सड़क मार्ग से वहीं आ रहे हैं ताकि पापा का अंतिम संस्कार और श्राद्ध क्रम वगैरह घर पर संपन्न हो सके। ठीक है बेटा, कहकर मुक्ता फोन काटती है। फोन कटने के बाद तो जैसे मुक्ता सन्न हो जाती है। पूजा से कुछ भी बोलने से पहले मुक्ता खुद को संभालना चाहती हो और अनायास उसके कदम वहां से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास रुकते हैं। वह पेड़ के चारों ओर बने सीमेंट के ओटे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद काफी हिम्मत जुटाते हुए वह पूजा के पास जाती है और थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, ये क्या तुम ऐसे रोए जा रही हो, संभालो अपने आप को। और फिर तुरंत ही उसके सर पर हाथ रखकर सहलाते हुए थोड़ी धीमी और प्यार आवाज में कहती है, शांत हो जाओ पूजा, जिसको सब संभालना होता है वह रोते नहीं। तुम्हारी माँ ने तो पूरा जीवन जिया, सब कुछ देखा, बीमारी के कारण उनको कष्ट हो रहा था, ईश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया, ठीक ही हुआ, एक दिन सभी को जाना है, तुम तो मेरे साथ आओ। कहकर मुक्ता पूजा को उसी पेड़ के पास लेकर जाती है जहाँ थोड़ी देर पहले वह बैठी हुई थी। ओटे पर बैठ कर पूजा को पानी पिलाते हुए मुक्ता पूजा से कहती है, पूजा तुम्हारी माँ बुजुर्ग थी, पर सोचो अगर एक जवान बेटे की मौत उस माँ बाप के सामने हो जाए जो खुद बुढ़ापे से लड़ रहे हो, उस पत्नी के बारे में सोचो जिसने अनायास अपना पति खो दिया हो, और ये बातें मैं तुम्हें अकारण नहीं कह रही हूँ। ये कहते हुए मुक्ता पूजा के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, पूजा तुम्हारी जेठानी का बार बार फोन आ रहा था ना जो मैंने उठाया, वो यहाँ आने के लिए निकल रही थी, यही बताने के लिए फोन किया था, पर वो यहाँ आकर तुम्हें संभाले, इससे ज्यादा जरूरी तुम्हें उन्हें संभालना होगा क्योंकि आज सुबह हार्ट अटैक के कारण तुम्हारे जेठ का निधन हो गया है। खबर सुनते ही पूजा की आंखें फैल जाती है और पूजा के मुंह से आवाज आती है, आ ये क्या हो गया, हे भगवान। वहां से वे लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि उनकी मुखाग्नि उनके अपने घर यानी तुम्हारे घर से होगी, और इधर भी एम्बुलेंस हो गया है तुम्हारी माँ के पार्थिव शरीर को उनके अपने घर ले जाने के लिए, इसीलिए तुम खुद को संभालो। मुक्ता पूजा को समझाए जा रही थी, तुम्हें अपने सास ससुर को आराम से बताना होगा या फिर अभी मत बताओ, रात में खाना खिलाने के बाद बताना। तभी शांत बैठी पूजा मुक्ता से जोर से लिपट जाती है और रोने लगती है। उसके मुंह से लगातार एक ही शब्द निकल रहा था, मैंने अपनी माँ की अंतिम विदाई भी नहीं देख पाऊंगी। न जाने कौन से कर्म किए थे मैंने जो ऐसी सजा मुझे मिल रही है। पूजा जार बेजार रोई जा रही थी। तभी संजय जी भी वहाँ आ जाते हैं। लगभग रोते हुए वह भी ओटे पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक तरफ माँ पापा भाभी एवं उनके बच्चों को संभालना है और इधर से भी पार्थिव शरीर के साथ जाने के लिए पूजा के भाई के साथ कोई भी नहीं है। इस परिस्थिति में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूँ। समझ नहीं आ रहा, पूजा से भी कैसे कहूँ कि तुम मत जाओ, आखिर माँ है उसकी, यहाँ भी कैसे रोकूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुक्ता संजय जी को पानी पिलाती है और कहती है, संभालिए अपने आप को, ऐसी विकट परिस्थिति ईश्वर ना करे किसी पर भी आए। आप पूजा को और अपने घर के लोगों को संभालिए, अभी आपकी उपस्थिति यहाँ ज्यादा जरूरी है। पूजा का भाई अकेले नहीं जाएगा, पार्थिव शरीर के साथ मैं जाऊंगी ऐसी स्थिति में उसके साथ। एम्बुलेंस आ गया, पार्थिव शरीर रखा गया, एम्बुलेंस का दरवाजा बंद होता है। मुक्ता पीछे बैठ जाती है। पीछे बैठी मुक्ता दरवाजे के कांच से देख पा रही थी जार बेजार रोती पूजा को। एम्बुलेंस के आगे बढ़ते ही जमीन में लोट लोट कर पूजा रो रही थी। उसके पति और बच्चे उसे उठाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। एम्बुलेंस आगे बढ़ गया, देखते देखते दृश्य ओझल हो गया। मुक्ता के आंखों से भी आंसुओं की धार बह रही थी। वह सोच रही थी कि कितना दृश्य ये मुश्किल है कि वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी कि मैंने ऐसी यात्रा इससे पहले तो कभी नहीं की थी। पूजा के जेठ का परिवार उसके जेठ के पार्थिव शरीर के साथ दिल्ली से यात्रा कर रहा था और इधर मुक्ता रवि के साथ पार्थिव शरीर को पूजा के मायके ले जाने की यात्रा पर थी। मुक्ता मन ही मन ईश्वर से कह रही थी, ईश्वर ऐसी यात्रा मुझे क्या, मेरे दुश्मन को भी ना कराना, कभी मेरे दुश्मन को भी ना कराना। एम्बुलेंस से देर रात पार्थिव शरीर पूजा के घर पहुंचता है और दूसरे दिन पूजा के मायके और उसके जेठ का पूजा के ससुराल दोनों जगहों से एक और यात्रा निकलती है, अंतिम यात्रा। नमस्कार, धन्यवाद।
1: बेहद ही मार्मिक और कठिन परिस्थितियों से जुड़ी कहानी अंतिम यात्रा अभी आप सुन रही थी कहानीकार रूबी लाल से। बहनों, ये सच है कि जीवन में कठिनाइयां आती ही रहती हैं, लेकिन हर कठिनाई हमें एक सीख देती है, हर घटना हमें एक नया पाठ पढ़ाता है। अब मुहर्रम को ही लीजिए, इंसानियत त्याग परोपकार का ये पर्व हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है, त्याग का पाठ पढ़ाता है और परोपकार करना सिखाता है। मुहर्रम का महीना आते ही जहन में करबला का वो ऐतिहासिक मैदान और हजरत इमाम हुसैन की शहादत याद आती है। ये केवल एक तिथि या कैलेंडर का बदलाव नहीं है, बल्कि ये इंसानी मूल्यों, अद्वितीय आत्मोत्सर्ग यानी कि त्याग और निःस्वार्थ परोपकार का जीवंत प्रतीक है। इमाम हुसैन का संघर्ष किसी सत्ता या जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत और हक को बचाने के लिए था। इमाम हुसैन ने जानते हुए कि उनका मुकाबला एक विशाल सेना से है, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ये त्याग सिखाता है कि जब बात समाज, न्याय और सच्चाई की हो, तो इंसान को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुहर्रम के दौरान सबील यानी मुफ्त प्याऊ लगाए जाते हैं, जहां हर राहगीर को बिना किसी भेदभाव के ठंडा पानी या शरबत पिलाया जाता है। ये दिन हमें अपने भीतर झांकने, बुराइयों का त्याग करने और समाज के कल्याण के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देता है। और वक्त का ये इशारा है कि हमें आपसे लेनी होगी विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपनी दोस्त और बहन जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।
0: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित होंगे। 1:10 से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से।

0: जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश माघो। Prime Minister Narendra Modi says India has begun to move forward with a new vision for the shipbuilding sector. Mr. Modi said this after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agraye in Kolkata, West Bengal today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said, India is strengthening its entire maritime ecosystem.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है नई क्षमता तैयार कर रहा है नई कनेक्टिविटी बना रहा है नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है
2: The Prime Minister emphasized that the commissioning of these warships is a sign of India's future. In his address, Mr. Modi also said that in the coming years, India's maritime sector has the potential to create lakhs of new jobs. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. The 12th International Yoga Day is being celebrated across India and around the world with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, "Yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit." President Draupadi Murmu also performed yoga at Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Addressing the event, the President said, Yoga is a celebration of India's great tradition. She said yoga has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life. The National Testing Agency, NTA, has issued guidelines for the students appearing for the NEET UG re-examination today. Over 22.79 lakh candidates will sit for the exam in 551 cities in India and 14 cities abroad. The NTA said entry to the examination centres will close at 1:30 in the afternoon. It has asked the students to carry their admit cards and valid photo ID. The admit cards for the exam can be downloaded from the website neet.nta.nic.in. Talking to media in New Delhi, Union Education Minister Dharmendra Pradhan assured that all necessary arrangements have been made for the smooth conduct of the exam. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF, will draw to a close today. The biennial festival of documentaries, short fiction, animation and AI cinema began on 15th June and will conclude tonight with a grand closing ceremony. One of the key attractions on the final day of MIFF will be the screening of V. Shantaram, the Pioneering Spirit, marking the 125th birth anniversary year of the legendary filmmaker. U.S. Vice President J.D. Vance has arrived in Switzerland. Mr. Vance earlier said the United States will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation from Tehran is also on the ground and has warned that talks won't advance without first addressing Lebanon. Hours after Tehran said it closed the Strait of Hormuz because of Israel's attacks in Lebanon and warned that little might be achieved if the fighting doesn't stop, U.S. President Donald Trump, in response, unleashed a new threat to impose American controls in the crucial waterway. In cricket, India A were 291 for 6 wickets in 42 overs against host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.

0: Açar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। योग दिवस पर राज्य भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी ने योग के नियमित अभ्यास का किया आह्वान। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए झारखंड को 2 राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिले। जच्चा बच्चा की डिजिटल निगरानी और रेफरल व्यवस्था में सुधार के लिए मिला सम्मान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज होने वाली नीट परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को दी शुभकामनाएं। कहा, परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, बिना किसी भय के परीक्षा दे अभ्यर्थी। शहीद पुलिसकर्मियों और जवानों के बच्चों के लिए रांची में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। और खूंटी में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान PLFI कमांडर घायल होकर गिरफ्तार। अभियान में 6 अन्य उग्रवादी भी दबोचे गए। जंगल में तलाशी अभियान जारी। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज राज्य भर में बड़े पैमाने पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने लोक भवन में बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में 253 लोगों के साथ योग किया। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि आज योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने झारखंड में योग को आगे बढ़ाए जाने की भी घोषणा की। डॉक्टर अंसारी आज रांची में आयोजित योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने योग के महत्व को रेखांकित किया।
1: आप योगा करोगे तो स्वस्थ रहोगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। योगा करने से मन स्वस्थ, बुद्धि बढ़ेगी और अनुशासन आएगा और आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी। तो योगा तो भारत की संस्कृति, महर्षि पतंजलि का जो योगा है आज हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के घर घर में पहुंच गया। कोरोना में देखा हम सब के योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से देश स्वस्थ रहा, कोरोना का युद्ध हम सब।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित एक कार्यक्रम में योग को स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी बताया।
2: स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तर पर इस बात को सिद्ध किया है और विश्व ने माना है और आज लगभग 177 देश अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस के रूप में मना रहा है। स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन होना जरूरी है और स्वस्थ मन के लिए योगा करते हैं। जब नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे।
0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राज्य के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। साहिबगंज, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, गुमला, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा सहित कई जिलों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने योगाभ्यास में भाग लिया। कार्यक्रमों में योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया तथा लोगों को योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, तनाव कम होता है तथा कई बीमारियों से बचाव संभव है। राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड को 2 श्रेणियों में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला पुरस्कार जच्चा बच्चा की डिजिटल निगरानी के माध्यम से रेफरल दर में 50% वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मिला है, जबकि दूसरा पुरस्कार स्वास्थ्य जागरूकता वाहनों के जरिए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए प्रदान किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज आयोजित नीट UG पुनर्परीक्षा में 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दे। इधर रांची समेत राज्य भर के 67 केंद्रों पर स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के टेंडर ग्राम स्थित झारखंड जगुआर कैंप में शहीद पुलिसकर्मियों और जवानों के बच्चों के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस विद्यालय में पहले से 12वीं कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध रहेगी। 6 एकड़ भूमि में बनने वाले संस्थान में शिक्षकों और कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था भी होगी। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है।
3: ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: धनबाद में कोयला परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के लिए कपड़ा उद्योग लगाया जाएगा। इसके तहत एक फैक्ट्री स्थापित होने से 1100 लोगों को रोजगार मिलेगा। BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उद्योग के लिए जमीन समेत अन्य सुविधाएं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड उपलब्ध कराएगा, जबकि उद्योग की स्थापना निजी कंपनियां करेंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर निजी कंपनियों और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। खूंटी जिले से पुलिस ने एक अभियान के दौरान नक्सली कमांडर समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान जारी है।
4: को सूचना प्राप्त हुई है और इसके साथ ही कुछ एक बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से इकट्ठा हुए हैं। छापेमारी किया गया तो वहां पे व्यक्ति हम लोगों को पकड़ा गया और उनके पास से 2 हथियार मिले। हथियारों के साथ 21 गोलियां भी प्राप्त हुई। पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा बताया गया कि इसके पास कुछ और भी हथियार और गोलियां हैं। कुल मिला के 4 हथियार हम लोगों को बरामद हुए हैं। 28-29 गोलियां भी हम लोगों ने बरामद। इनके पास से जबकि में हम मोबाइल भी मिले हैं, PLFI के बहुत सारे पर्चे मिले हैं।
0: देवघर जसीडी बाईपास लाइन के निर्माण कार्य के कारण आसनसोल रेल मंडल में कल और परसों कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अगले 2 दिनों के लिए जसीडी झाझा, जसीडी क्यूल तथा देवघर झाझा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से किया जाएगा। धनबाद पटना एक्सप्रेस, आनंद विहार डांकुनी स्पेशल और हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस को भी रास्ते में नियंत्रित कर चलाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पूर्व ट्रेनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले 2 दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। योग दिवस पर राज्य भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी ने योग के नियमित अभ्यास का किया आह्वान। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए झारखंड को 2 राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिले। जच्चा बच्चा की डिजिटल निगरानी और रेफरल व्यवस्था में सुधार के लिए मिला सम्मान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज होने वाली नीट परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को दी शुभकामनाएं। कहा, परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, बिना किसी भय के परीक्षा दे अभ्यर्थी। शहीद पुलिसकर्मियों और जवानों के बच्चों के लिए रांची में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। और खूंटी में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान PLFI कमांडर घायल होकर गिरफ्तार। अभियान में 6 अन्य उग्रवादी भी दबोचे गए। जंगल में तलाशी अभियान जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM 102.4 MHz पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
5: प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

साया फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में, एमएम किरवानी के संगीत पर। बोल थे आनंद बख्शी के।

भूल भुलैया 3 फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार के स्वर में। गीतकार थे आदित्य रिखारी, संगीत दिया था आदित्य रिखारी, डीजे चेतस और लिजो जॉर्ज ने।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

दुकान फिल्म का ये गीत था। आप सुन रहे थे अनन्या वाडकर, प्रजक्ता शुक्रे, मीनाल जैन, अपूर्वा निषाद और दिव्या कुमार की आवाज में। गीतकार थी सिद्धार्थ गरिमा, संगीत दिया था श्रेयस पुराणिक ने। अगला गीत आइए सुनते हैं फाइटर फिल्म से। कुमार की रचना है विशाल शेखर ने, धुन सजाई है, आवाजें हैं विशाल मिश्रा, शिल्पा राव, विशाल दादलानी और शेखर रवजियाने की।

सत्य प्रेम की कथा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे पायल देव और विशाल मिश्रा की आवाजों में। पायल देव के धुन पर एम तुराज ने इस गीत को रचा था।

जलवायु और शिक्षा। यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सके। क्या आप जानते हैं 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी।

साइना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज में अमान मलिक की धुन पर, शब्दकार थे मनोज मुंतशिर। श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी जमशेदपुर से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला गीत आइए सुनते हैं फिजा फिल्म से, आवाजें हैं सुनिधि चौहान और करसन सगाथिया की, अनु मलिक के धुन है, शब्द रचना है तेजपाल कौर की।

ये थे सुनिधि चौहान और करसन सगाथिया अनु मलिक के धुन पर आप सुन रहे थे फिजा फिल्म का ये गीत। शब्दकार थी तेज पाल कौर और ये थी फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। श्रोताओं दोपहर 2:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 3:00 सुनिएगा रोजगार समाचार। 3:05 पर आप सुनेंगे भजन सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत कलाकार होंगे सुमोना रॉय विश्वास। 3:15 का समय होगा झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम का। उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे बांसुरी वादन। कलाकार होंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। समय 3:30। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत के तहत मैथिली लोकगीत। कलाकार होंगे क्षितिज मिश्रा। सामुदायिक गीत पाठ आप सुनेंगे शाम 4:02 से।

कार्यक्रम फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे शाम 4:30 पर। शाम 5:02 पर सुनेगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे अंग्रेजी में। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कल कारखाने। शाम 6:10 पर झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे खड़िया लोकगीत। कलाकार होंगे बोधराम खड़िया। कृषि जगत कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:30। शाम 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf, has named Binab 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions three indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया. कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है. प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के तीन पोत राष्ट्र को समर्पित किए. कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी. अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे. ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया. मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया. और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया. वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है.
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता. योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है. इसलिए योग के विषय में युग चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है. यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया. इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे. राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है. उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया.
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना. मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ. ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे. ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
4: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
5: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, नफ के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17,00,000 बच्चों से लगभग 15,50,000 बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम,

द्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला

ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोपहर समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के दिवाकालीन प्रसारण। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को आप सुन रहे थे रवि के धुन पर मोहम्मद रफी के स्वर में। फिल्म थी नई रोशनी। अगला गीत आइए सुनते हैं ज्वेल थीफ फिल्म से। एच डी वर्मन के धुन है। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को रचा है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में।

0: ज्वेल थी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह के स्वर में, एस टी वर्मन के धुन पर। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

चोर मचाए शोर फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:55 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीन नौसैनिक जहाजों आईएनएस दोनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का जलावतरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने निर्माता से निर्णायक बनने का मंत्र दिया। श्री मोदी ने बताया कि भारत का रक्षा उत्पादन निर्यात लगातार बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड समेत देश दुनिया में आज योग साधना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर स्वस्थ और अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो स्वरूप प्रदान करवाया, वो दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। और निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपने जीवन में थोड़ा समय इस काम के लिए निकालें।
0: योग दिवस पर राजकीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोग ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुई और योग को स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी बताया। पाकुड़ में भी कई स्थानों पर योग दिवस के सिलसिले में शिविर के दौरान लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग शिविर में उपायुक्त मेघा भारद्वाज और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने योग को भारत की प्राचीन विरासत और अमूल्य धरोहर बताया।
3: हमारे देश की धरोहर है और हमारे देश का मतलब एंशिएंट प्रैक्टिस है, इसको हम कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आज के भागदौड़ के जीवन में शारीरिक मतलब जो बीमारियां हैं उनको दूर रखने के लिए प्रिवेंटिव बहुत अच्छा काम करता है। और मानसिक भी शांति, जैसे अभी हम लोगों ने प्राणायाम किया तो इससे काफी जो है रिलैक्स फील होता है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से ली जा रही है। एनटीए ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए देश भर में अभूतपूर्व सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जरियागढ़ थाना क्षेत्र के तिलमी जंगल में हथियार बरामदगी के लिए ले जाए गए नक्सली संगठन पीएलएफआई के कमांडर श्रवण दास ने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर भागने और फायरिंग की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि अभियान के दौरान 6 अन्य उग्रवादियों को भी दबोच लिया गया है। सुरक्षा बलों ने जंगल से हथियार, कारतूस और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान जारी है। हजारीबाग के सदर प्रखंड स्थित सखिया में आज टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर स्वास्थ्य जांच कराई तथा टीबी से बचाव और उपचार संबंधी जानकारी प्राप्त की। मौके पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने ग्रामीणों को टीबी उन्मूलन अभियान से जुड़ने तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य में बारिश के बावजूद तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान पारा ऊपर की ओर चढ़ा है। हालांकि अधिकतम तापमान में 2 दिनों बाद थोड़ी गिरावट हो सकती है। राज्य में 27 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए को भरा जाएगा। शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होल्डर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ तिथि तक उनकी परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। पद के अनुसार न्यूनतम आयु 18 या 20 वर्ष जबकि अधिकतम 27, 30 और 32 वर्ष है। ये परीक्षा 2 चरण टीयर 1 और टीयर 2 में आयोजित की जाएगी। परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड यानी CVT मोड में आयोजित होंगी। टीयर 1 परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रत्येक विषय के लिए 50 अंक के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टीयर 1 की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल च्वाइस प्रश्न होंगे। इस चरण को पास करने वाले उम्मीदवार टीयर 2 परीक्षा में शामिल होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है।

कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए कुल रिक्तियां हैं 12,256। पदों के नाम हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिटर। आवेदन करने की अंतिम तिथि एक बार फिर से सुन लीजिए, 22 जून 2026। सीमा सड़क संगठन ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। कुल रिक्तियां हैं 899। आवश्यक योग्यता है 12वीं पास और वाहनों या इंजीनियरिंग उपकरणों से संबंधित ज्ञान रखने वाले आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2026 है। इस पद पर चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अनुसार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं https://bro.gov.in। आकाशवाणी जमशेदपुर से रोजगार समाचार समाप्त हुए।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गजल, कलाकार थी सुमोना रॉय विश्वास। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। आइए अब सुनते हैं झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए नागपुरी लोकगीत। कलाकार हैं वीणा सिंह एवं साथी।

झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत। कलाकार थी बीना सिंह एवं साथी।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz पर।

सुखविंदर सिंह की आवाज़ में चलते चलते फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। बाबू मान का लिखा गीत था और आदेश श्रीवास्तव का संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों को अभी आप सुन रहे थे दूसरा आदमी फिल्म से लिए इस गाने में। गाने के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसकी संगीत संरचना की थी राजेश रोशन ने।

कुदरत फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ को, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत और आर डी बर्मन का संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत।

0: शिवाजी चट्टोपाध्याय की आवाज़ में। ये गाना अभी आप सुन रहे थे फिल्म 1942 लव स्टोरी से। जावेद अख्तर ने इस गीत के बोल लिखे थे और इसकी संगीत संयोजना की थी राहुल देव बर्मन ने। इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत की आज की प्रस्तुति से मुझे यानी विभा को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz।
1: तक के मुख्य समाचार।

0: चारों के साथ मैं समीर बाखला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर स्वस्थ तथा अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस पर राजकीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल अंकों का नहीं बल्कि उन अनगिनत घंटों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण का है जिसने इन बच्चों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। श्रीमती पांडे ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं बल्कि हजारों अन्य विद्यार्थियों को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। राजधानी रांची समेत राज्यभर के 67 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा जारी है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए एनटीए और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि पुनर्परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 2 बजे से शुरू हुई यह परीक्षा शाम 5:15 बजे तक चलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि बोकारो, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, पाकुड़, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां जिले में अगले कुछ घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:02 हो चुके हैं। अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं विराम और सुनते हैं ये संदेश।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: संदेश के बाद हम हाजिर हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन रविवार है, इसलिए आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित अंग्रेजी कार्यक्रम यूथ टाइम्स।

0: That was Love, Love, Love by Stephen Sanchez, written and composed by Stephen Sanchez himself with Ian Fitcher.
1: QR code scan karo, 5000 ka cashback pao. Wah, din ban gaya.
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

युवा श्रोताओं को संबोधित अंग्रेजी कार्यक्रम यूथ टाइम्स अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 होने ही वाले हैं। अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं विराम और सुनते हैं ये

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657296044 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।

0: अच्छी बात है, वो इंडिया ए टीम के लिए ऑलरेडी इंग्लैंड में थी एंड वहाँ पे उनको इंडिया कॉल आया, आज वो डेब्यू भी कर रही हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये भी है उनकी, वो यहाँ पे लेग स्पिन डालती हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो रिस्ट बॉलर है, रिस्ट बॉलर को जज करना उतना ईजी नहीं होता है, और आज उनको अपना ये चांस ग्रैब भी करना चाहिए। एंड बैटिंग लाइनअप की अगर बात करूँ तो हमारे बैटर्स को कम से कम उतनी उनको फोकस करना चाहिए कि वो सिक्स पावर प्ले के अंदर, सिक्स ओवर के पावर प्ले के अंदर जितने रन्स बटोर सकते उतने बटोरे, और जितनी कम विकेट हम फॉल करेंगे उतना बेटर हमारे लिए होगा।
1: राइट देन, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, मेरा नाम मुनीश जॉली। अगला सवाल मैं रविंदर सिंह आपसे पूछना चाहूंगा। यहाँ पे श्रेयंका पाटिल के बारे में बहुत अनफॉर्चुनेट इंजरी थी, आपको लगता है एक बहुत बड़ा ब्लो है भारतीय टीम के लिए?
2: डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि वो जो ऑफ स्पिनर थी प्लस वो पावर प्ले में जो उनका जो एडवांटेज था बॉल डालने का, वो अब जरूर इंडिया मिस कर रही होगी। और मुझे श्रेयंका पाटिल के जो इस समय जो बैलेंस है टीम का, वो अब प्रेमा रावत से कितना बैलेंस हो पाता है ये तो आज वक्त बताएगा, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा ब्लो है इनसे।
3: उत्तरा अभी बात की वैशाली ने पावर प्ले की, पावर प्ले में सुफारा ओपनर्स आर डूइंग वेल, लेकिन अब पावर प्ले में सामना करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका के लीथल बॉलिंग अटैक का। एक एन से मर्जन का, दूसरे एन से शबनम स्माइल, और फिर इनके अलावा आया बुंगा खा का। आज इंडिया पावर प्ले में कैसा परफॉर्म करता है, क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आज के मैच का, और इज इट गोइंग टू बी अ बैटल ऑफ पावर प्ले, इंडिया Indian top order versus South African pacers?
4: I think it's going to be a battle of who is more hungry and desperate to win. India ke paas advantage ye hai ki do match already jeet chuke hain wo apne, aur South Africa ek hi jeeti hai, ek hari hai abhi, to unke liye zyada zaruri hai ye match jeetna apne chances banaye rakhne ke liye. India ke paas jo baki ke do match hain usme bhi ek team Bangladesh hai where we expect India to do really well, तो प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा होगा। बट अगेन जैसा कि पावर प्ले की बात है, तो T20 में पावर प्ले में मैचेस हैव बीन वन एंड हैव बीन लॉस्ट। शबनम इस्माइल के वापस आने से ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग हुई है। हमारी बैटिंग में ज्यादा अच्छी चीज ये है कि जो टॉप के तीन चार हमारे बैटर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगेन अगर वहां से सामने की तरफ से जिस तरह से बॉलिंग आएगी, अगर पावर प्ले में हम नहीं कर पाए तो थोड़ा सा मामला टाइट हो सकता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऋचा घोष हमारी मिडिल ऑर्डर उस तरह से नहीं फायर की है, ना उस तरह से टेस्ट हुई है इससे पहले के दोनों मैचेस में जो नेदरलैंड्स था और पाकिस्तान दोनों के ही साथ। तो प्रेशर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। जो हमारे टॉप के चार बैटर्स हैं, हरमन, शेफाली, स्मृति और जमीमा, एक्सपीरियंस है, फॉर्म है, रन्स हैं उनके पास, तो उन चारों का परफॉर्मेंस जो है वो एक तरह से आपका टेम्पलेट सेट करेगा कि टीम किस तरफ जाएगी। आपने पावर प्ले की बात की, मुझे लगता है कि इन चारों को पावर प्ले से बहुत आगे और खेलने की जरूरत है, क्योंकि अगर पावर प्ले में ये करते भी हैं और उसके बाद नहीं उस स्टार्ट को भुना पाते हैं तो भी जो बाकी के बैटर्स आएंगे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
1: Right then.

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आनंद में। संगीत सलील चौधरी का था, गीत लिखा था गुलजार ने। अगला गीत हमने लिया है अपराध फिल्म से, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

आइए सुने साथी फिल्म का गीत। आवाज लता मंगेशकर की है और संगीत नौशाद का है। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

आई मिलन की बिला इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की थी। शंकर जयकिशन ने धुन तैयार किया था और बोल थे शैलेंद्र के। अगला गाना पत्थर की सनम फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

फिल्म पत्थर के सनम में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को, और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं ख़त्म होता है। दीजिए इजाज़त उमा पांडे को, नमस्कार। FM 100.8 MHz पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं, ठीक 7 बजे आप सुनेंगे रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड समेत देश दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का हुआ संचार। प्रधानमंत्री ने कहा, बेहतर भविष्य के लिए योग जरूरी। राजधानी रांची समेत राज्य के 67 केंद्रों पर नीट यूजी की परीक्षा सम्पन्न। केंद्रों पर दिखे कदाचार मुक्त परीक्षा के व्यापक इंतजाम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची संसदीय क्षेत्र को सड़कों की दी सौगात। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छतरपुर में सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, SIR के प्रारूप मतदाता सूची में अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म की 5 श्रेणियां नहीं की जाएंगी शामिल। और भारत ने जीता FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब। मेजबान न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में 2 गोल से किया पराजित। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए योग जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर स्वस्थ तथा अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुई और योग को स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी बताया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के मोरहाबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में बच्चों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। श्री मरांडी ने योग को सभी से अपनाने का आग्रह किया।
2: योग से कैसे लोग निरोग हो सकते, और उसके लिए अगर आदमी सुबह को आधा घंटा एक घंटा समय देता है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया आप इस अंगीकार के, और पूरी दुनिया में आप सार्वजनिक रूप से आप सभी योग करते हुए आपको लोग दिखाई।
0: राज्य के साहिबगंज, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, गुमला, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, धनबाद और गोड्डा सहित सभी जिलों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों, विद्यार्थियों और आम लोगों ने भी सामूहिक योगाभ्यास किया। राजधानी रांची समेत राज्यभर के 67 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा ली गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था किए गए थे। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए NTA और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची संसदीय क्षेत्र के कांके में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 4,54,00,000 रुपए की लागत से पातगाई से बंटोली तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। श्री सेठ ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र के आवागमन को सुगम बनाने के साथ विकास को नई गति प्रदान करेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छतरपुर और नवडीहा बाजार प्रखंड में कई महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम भी मौजूद थे। इस दौरान श्री किशोर ने कहा कि इन योजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर के प्रारूप मतदाता सूची में अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म की 5 श्रेणियां शामिल नहीं की जाएंगी। उन्होंने आज कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि मौजूदा मतदाता सूची से कुछ मतदाताओं के नाम हटा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक वर्तमान मतदाता सूची के सभी मौजूदा मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म प्रदान किया जाएगा और वे सभी मतदाता जो हस्ताक्षर इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे उन्हें एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर श्री दुबे ने बताया कि कल से उनके संसदीय क्षेत्र में निःशुल्क नमो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एटीएम के जरिए प्रत्येक परिवार को 20 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
3: इस लोकसभा के 14 से 15 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और जो गांव में लगेगा उसमें सबको एटीएम कार्ड देंगे तो 20 लीटर से ज्यादा एक परिवार शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। और तीसरा,

0: Dan ben je tegen je Barcelona. Nisul ke ambulance mila ka uska ek call free number hum jari karenge aur 24 ghante 365 din jab bhi logon ko aavashyakta hogi wo ambulance milega.
1: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि कांग्रेस माले और राजद के नेताओं द्वारा दिया जा रहा बयानबाजी उचित नहीं है। श्री पांडे ने इस मामले पर महागठबंधन के नेताओं के साथ समीक्षा की।
2: इसके तरफ से क्या बयान आ रहा है, आरजेडी की तरफ से क्या बयान आ रहा है, माले की तरफ से क्या बयान आ रहा है, ये सभी चीजें हम लोगों के संज्ञान में। लेकिन इस तरह से गठबंधन में अगर हम लोग सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पे आरोप लगाए तो उससे बेहतर होगा कि हम गठबंधन की बैठक करें और उस गठबंधन की बैठक में हम चर्चा कर लें और उसके बाद जो भी निर्णय हो गठबंधन में उस निर्णय को हम लागू।
1: धनबाद में आम उत्पादकों को बाजार से जोड़ने और बागवानी को बढ़ावा देने की दिशा में जिला प्रशासन ने आज आम उत्सव की शुरुआत की है। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि स्थानीय किसानों द्वारा प्राकृतिक तरीके से उत्पादित आम लोगों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आम बागवानी के जरिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
3: इस साल हम लोग टारगेट लिए हैं कि जितना हर साल आम बागवानी होता है, इस साल उसका कम से कम 2 से 3 गुना आम बागवानी हम लोग करेगा से करेंगे। मेन समस्या जो झारखंड की है, पठारी क्षेत्र है पानी का, तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 एकड़ से बड़ा का पैच हो, वहाँ हम लोग पानी के लिए DMFT से जिला योजना से पानी का स्रोत जो है डीप बोरिंग करके या चापाकल बना के देंगे।
1: मौसम विभाग केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 जून तक राज्य के कुछ और इलाकों में मानसून प्रवेश कर सकता है। केंद्र के मुताबिक राज्य में 27 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद के तोपचांची में सर्वाधिक 40.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। हॉकी। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार यह प्रतियोगिता जीती है। गौरतलब है कि इस टीम में झारखंड की 3 बेटियां कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग शामिल थी। इस खिताबी जीत के साथ ही भारत ने महिला FIH प्रो लीग में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत के लिए बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड समेत देश दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का हुआ संचार। प्रधानमंत्री ने कहा, बेहतर भविष्य के लिए योग जरूरी। राजधानी रांची समेत राज्य के 67 केंद्रों पर नीट UG की परीक्षा संपन्न। केंद्रों पर दिखे कदाचार मुक्त परीक्षा के व्यापक इंतजाम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची संसदीय क्षेत्र के सड़कों की दी सौगात। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छतरपुर में सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, SIR के प्रारूप मतदाता सूची में अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म की 5 श्रेणियां नहीं की जाएंगी शामिल। और भारत ने जीता FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब। मेजबान न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में 2 गोल से किया पराजित। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा।
5: अभी आप सुन रहे थे रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार FM 100.8 MHz पर। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। और अब आइए सुनते हैं विशेष जयमाला, जिसके तहत आज आप सुन सकेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा। आइए सुनते हैं।

1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक लड़ा गया था। इस दौरान हमारे तीनों सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। तकरीबन 4090 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 600 सैनिकों को विभिन्न सैन्य सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र शामिल हैं। इन महावीर चक्र विजेताओं में से ही एक हैं हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो शामिल थे उस 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री में, जिसे इस युद्ध में बैटल ऑनर बुर्ज और द थिएटर ऑनर पंजाब का सम्मान भी मिला।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। ७१ में पाकिस्तान की ओर से युद्ध का आभास होते ही संभावित हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके तहत 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री को मध के पास साकी नाले पर फतेहपुर लोपोक का भार सौंपा गया। इस इन्फेंट्री में ही शामिल थे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। इस इन्फेंट्री ने छनकला, तुर और भिंडी औलक गाँवों में निगरानी रखने के साथ ही वेरा में भी लड़ाकू दस्ता स्थापित कर दिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस कदम से फतेहपुर, बुर्ज और घोगा इलाके की सीमा सुरक्षा बल पोस्ट को भी मजबूती मिली। यूं भी मराठा लाइट इन्फेंट्री अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फील्ड रेजिमेंट और 66वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की विजयंत टैंक स्क्वाड्रन भी थी। वहीं अमृतसर के दिशा में शत्रुओं को रोकने के लिए दूसरी बटालियन तैनात थी और तीसरी बटालियन को गुरदासपुर सेक्टर में मोर्चा दिया गया। इस तरह हम शत्रुओं के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
1: बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, सिंह से दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो,
2: बढ़े चलो, बढ़े चलो,
1: पत्थर जो

0: अनुमान के अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलख भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।
1: आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल।

0: करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड।

0: दया का भाव या की शौर्य का चुनाव या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या की पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या की केसरी हो काल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।
1: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
2: विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
3: जब जब किसी हमलावर ने
4: रोजाना भूले बिसरे गीत के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।
5: सैनिकों की शौर्य गाथा कहानियां अदम्य साहस की कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की सैनिकों की शौर्य गाथा।
6: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था सुजला

संस्कृत भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने

15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध के मैदान में डटी थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर रणबीर सिंह, जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी, वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर रणबीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक और जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद ही जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडुरंग सालूंखे अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करे। बिना देर करते हुए एक योजनाबद्ध हमला करने का फैसला किया गया, जहां दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाते हुए टैंक टुकड़ी को पीछे से और बाकी आगे से हमला करने निकल चले। इससे शत्रु के आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद होता ही था, साथ ही वो पीछे हटने लायक भी नहीं रह पाता।

शत्रु की कल्पना से परे एक ऐसा रास्ता निकालना जो उसके होश उड़ा दे, एक बेहतरीन नेतृत्व का उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरणों की भरमार है हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा में।

बेहतरीन नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणबीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यौछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो दो हाथ कर रहे थे। तभी उनकी नजर शत्रुओं के एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया। लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर स्टेन गन से धुआंधार वार किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।

सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हम इस जांबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर निहर शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज। बांसुरी पर हैं पारसनाथ। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं झलकी मोटी मछली। लेखक हैं वी एम आनंद और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: मिस्टर भैरवी लाल, मिस्टर बी लाल।
2: यस सर।
1: जब से हमने ये वन टू ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, यहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ ही मक्खियाँ, मक्खियाँ ही मक्खियाँ।
2: मक्खियाँ मक्खियाँ सर, मैं आपको मतलब नहीं समझ।
1: मतलब तुम उस दिन समझोगे भैरवी लाल, जब इस स्टोर में ताले लग जाएंगे।
2: ऐसा ना करिएगा सर, ऐसा ना करिएगा।
1: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को फांसो, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हो।
2: क्या करें सर, यहाँ पर कोई खास कस्टमर तो आता नहीं।
1: कस्टमर आता नहीं, अरे जब आता है तब तुम कौन सी तोप मार लेते हो। कस्टमर खाली हाथ चला जाता है और खरीदता भी है तो 10-5 रुपए का। ऐसे कैसे काम चलेगा ट्यूमिस पाउडर वाला?
3: यस बॉस।
1: तुम सारा दिन अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक किया करती हो, कभी किसी कस्टमर को अटेंड करती हो?
3: पन तो अपना सब कस्टमर अटेंड करता है सर, पर इधर कौन सा बड़ा कस्टमर आने ही मांगता है।
1: मिस पाउडर वाला कस्टमर वही बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझी तुम?
2: सर, जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो, तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
3: यस सर, आई ऑल्सो ट्रीट माई एवरी कस्टमर लाइक माई डैडी।
1: लेकिन जिस डैडी की जेब न साफ की जाए वो डैडी कैसा? मेरा मतलब है अब से तुम हर ग्राहक को मछली समझो।
2: मछली?
3: You mean a fish?
1: Yes, हर ग्राहक को मछली समझो।
2: अच्छा।
1: और अपने आप को बगुला, जो ही मछली स्टोर में घुसे उस पर
2: झपट पड़ो।
1: राइट।
2: हम तो कहीं तक इसके तक पहुंच ले जाएंगे ना पावर। अच्छा सर, वेरी गुड आइडिया।
1: देखो, कस्टमर के सामने अपने माल की तारीफों के पुल बांधो और कस्टमर को किसी चीज की प्राइस डिस्कस करने का मौका मत दो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि उसको बोलने का मौका मत दो, उसको इंटरटेन करो। और फिर देखो कस्टमर कितना बड़ा ऑर्डर देता है तुमको।
3: रियली सर, इट इज अ वंडरफुल आइडिया। अब तो कोई भी कस्टमर इधर से बच के जाएगा ही नहीं सर।
2: सर, yes, really, you are a brain.
3: Really, sir, you are a genius.
1: Customer, quiet. Oh.
3: Customer, hey. Customer, kahiye sir.
4: Wonderful. आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से लेकर कार तक हर चीज मिलती है।
1: देखो भाई, आज इस ग्राहक से बड़ा ऑर्डर लेना है। आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए जाइए जाइए। आइए सर, आइए आइए आइए। खुशामदेद, वेलकम, स्वागतम। वन टू ऑल स्टोर हमने आपके लिए ही खोला है सर। यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिलती है।
4: वेरी गुड। ऐसा पूछिए तो मुझे ऐसी ही दुकान की यानी ऐसे स्टोर की तलाश थी। क्या मुझे काफी चैन मिला। हाँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
1: सर आप फिक्र न करें, जो चीज आपको शहर में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी, यानी कि सुई से लेके कार तक सर। और सर आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आप यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। सुनो, मछली फंस गई।
3: मोटी मछली?
1: जी, मेरा मतलब है मोटी मछली। वो आप देख रहे हैं सर, वो हमारे खिलौनों का डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट।
4: योर मेन टॉयज डिपार्टमेंट?
1: जी हाँ सर, वहाँ पर हर तरह के खिलौने मौजूद है सर, और वहाँ पर एक मोटी मछली भी है। आइए ना, आपको हर डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए। चलिए सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, मिस पाउडर वाला।
3: Yes, boss.
1: सबसे पहले हम वहीं चलते हैं।
3: Sure.
1: ये देखिए सर, ये है हमारा टॉयज डिपार्टमेंट। ये देखिए सर, ये भालू, भालू देखिए, भालू कितना सुंदर है। और ये कुत्ता देखिए सर, और ये सर कबूतर, और ये सर ये देखिए मोटी मछली है।
4: मोटी मछली? ओह आई सी, इट्स अ रियली लवली फैट फिश।
1: सर ये मछली कितनी हैंडसम है, कितनी इनोसेंट है, बिल्कुल आपकी तरह।
4: सर ये देखिए,
5: आई लाइक इट वेरी वेरी मच।
1: थैंक यू, आपकी चॉइस बेमिसाल है सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आपके छोटे बच्चे की एज क्या है?
4: मेरा छोटा बच्चा?
3: Yes.
4: Oh, he is only 5 months old.
3: Oh, good.
1: Very good sir, very good. तो फिर आप ये बच्चा गाड़ी जरूर पसंद करेंगे। सर हमारे पास बच्चा गाड़ी का नया स्टॉक आया है, ये देखिए लेटेस्ट मॉडल लेटेस्ट डिजाइन। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि इन बच्चा गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है?
4: अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी सबसे बढ़िया है।
1: ओह वंडरफुल सर, वंडरफुल, योर चॉइस इज वंडरफुल। सर ये बच्चा गाड़ी ऑटोमेटिक है।
4: ऑटोमेटिक?
1: जी हाँ, यू समझिए कि जब आप और मेम साहब शाम को घूमने निकलेंगे तो साथ साथ ये बच्चा गाड़ी आप ही आप चलती जाएगी सर।
4: वंडरफुल, वंडरफुल, यानी कि अपने आप चलती
1: जाएगी। हाँ सर, देखिए वो बात यूँ है कि कभी आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे तो मेम साहब साथ चलेंगी, कभी मेम साहब

0: चलेंगी तो आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे, बस इस तरह से गाड़ी अपने आप चलती जाएगी सर।
1: ओह आई सी
0: और ये देखिए सर, इस बच्चा गाड़ी में एक निपुल लटका हुआ है, जब भी बच्चा रोने लगे आप ये निपुल चूस सकते हैं। मेरा मतलब है सर, ये बच्चे को निपुल चूसा सकते हैं सर।
1: ओ आई सी, वेरी गुड।
0: आइए साहब इस तरफ आइए। जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए सर, ये हमारा कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है सर, और इनसे मिलिए सर, ये हमारे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज है मिस पाउडर वाला।
2: गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
0: पाउडर वाला बी टैक्टफुल, ये बहुत बड़ा कस्टमर है। मोटी मछली
1: मछली।
2: ओके बॉस। सर आप जरा हाथ आगे देंगे।
1: यू मीन मैं अपना हाथ बढ़ाऊं?
2: यस सर। ये सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है।
1: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका।
2: सर ये सेंट काटा माटा जैस्मिन सेंट का है।
1: काटा माटा जैस्मिन सेंट?
2: यस सर, ये काटा माटा जैस्मिन सेंट का खुशबू है। सर जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा। और सर ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर। सर ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो हीरोइन, साइड हीरो साइड हीरोइन, सब लगाता है, सब वन टू ऑल सब लगाता है, पता सब। नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर। फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना। और सर ये देखिए, ओटो कमन शैम्पू, ये शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर।
1: लेकिन ये शैम्पू,
2: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा। आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेम साहब के लिए है। आई नो सर, आप तो सिर का गंजा है।
0: ओ मिस पाउडर वाला,
1: बच्चे चुप रहे,
0: तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा।
2: आई एम सॉरी सर।
0: इट्स ऑल राइट सर, आई एम वेरी सॉरी सर, वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर।
1: डजंट मैटर, डजंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
0: बात क्यों नहीं सर, बात क्यों नहीं है, अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर, मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर हैं, मगर आप गंजे हैं या नहीं, लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल हैं, बाल नहीं है लेकिन फिर भी बाल हैं, लेकिन नहीं है लेकिन है, मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल हैं।
1: ओह यस, ओह यस
0: सर, आई थिंक नाउ यू नीड दिस शैम्पू।
1: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
0: और सर इनसे मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर बी लाल।
3: गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
3: ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है। हुजूर आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है बैंजो, गिटार, सारंगी, तानपुरा, तबला, ढोलक।
1: मुझे आई मीन हर साज बजाने का शौक है, इट्स माय हॉबी।
3: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर साज बजाने का शौक है। और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
1: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
3: तो सर आप ताल, कहरवा, भैरवी, पहाड़ी ख्याल, मैदानी ख्याल, तीन ताल, चार ताल, नैनीताल, मल्ली ताल पसंद करेंगे, या दादरा ठुमरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे, या फिर आप फिल्मी गाने?
1: झुमका गिरा रे पप्पा रे जो,
3: जैसा कि कल जो

0: जाना।
1: तो चुप रहिए, मुझे आई मीन सिर्फ कथकली के रिकॉर्ड पसंद है।
2: कथकली? लेकिन सर कथकली तो नाच का नाम है, किसी गवैये का नाम तो नहीं सर।
3: फेर मी लाल, डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट? कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है।
2: नो सर, नो सर, आई मीन यस सर, आप ठीक कहते हैं। कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है। कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू, मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है।
1: You are right, you are right.
3: मिस्टर भैरवी लाल साहब हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं, इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। आप तशरीफ रखिए सर, मैं भी मंगवाता हूँ
2: कोल्ड ड्रिंक।
3: सुनो सुनो सुनो,
1: मैंगो जूस,
3: मैंगो जूस लाओ।
2: मैंगो जूस, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी।
3: सर ये लिए सर, आप मैंगो जूस पीजिए सर।
1: मैंगो जूस
3: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर, आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर। आपकी ये सेब खाइए सर, सेब। आप ये नाशपाती खाइए, नाशपाती।
1: भाई आप मजबूर तो खाना ही पड़ेगा।
3: इट्स अ प्लेजर सर। देखा भैरवी लाल कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज।
2: ग्राहक ना कहिए सर, मोटी मछली।
3: भैरवी लाल आज इस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
2: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर।
3: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए सर।
0: ये सर
1: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था। आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक।
3: यस सर, यू आर राइट, सुई से कार तक।
1: हाँ तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है?
0: व्हाट,
3: सुइयों का डिपार्टमेंट? सर वो तो हमने यही लिख रखा था, सुइयां हमारे पास नहीं है सर। आप तो मजाक कर रहे हैं।
1: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए।
3: एक पैकेट सुइयों का चाहिए? सुइयों का पैकेट?
1: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा मैं चला।
0: अरे लेकिन सर सुनो, अरे
2: सर रुकिए,
0: चले गए,
2: चले गए,
0: चले गए।
2: मोटी मछली।
4: मोटी मछली वीएम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे हवा महल कार्यक्रम में। इसके निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद।

0: आप सुन
1: जलवायु और लिंग, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। गांव की महिलाएं जो खेती में काम करती हैं, इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अक्सर उनकी बात सुनी ही नहीं जाती और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपदा के वक्त जैसे बाढ़ या सूखे में कैंप्स या आश्रय में उनके साथ यौन हिंसा का खतरा भी होता है। लेकिन इन्हीं महिलाओं के पास एक ऐसा ज्ञान भी होता है जो जलवायु संकट से लड़ने में मदद कर सकता है। बस जरूरत है उन्हें योजनाओं और फैसलों में शामिल करने की। क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में हर 3 में से लगभग एक महिला के अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।
2: रोजाना भूले बिसरे गीत के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से, आवाज़ें खान साहब और शाहसत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फ़तेह अली खान के और संगीत शाहसत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खान का।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म सितारे ज़मीन पर से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
6: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है। नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला

0: जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने के 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किर ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
6: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
5: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
6: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
7: रोजाना छाया गीत के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: हिमालयन हिल स्टेशन लेंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
1: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है, फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे का शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपर हिट थे और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे, तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहाँ से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहाँ रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बम्बे आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में, और संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, फिल्म मैंने मदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: हम समझते हैं अलीजा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
2: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: हमारी दरख्वास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएं।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान

0: को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
1: After which the company will assume the administration of Oud.
0: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
1: I hope the king has understood what I've said.
0: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
1: What is this? May please tell his majesty that I have no use for that.
0: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
2: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
3: और अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी के है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई। मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में। तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी। तो मैं जब पूना आया था 1972 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूँ। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले। तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
4: अच्छा।
3: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहाँ मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
5: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
3: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था। वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो। तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है। और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
5: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
1: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसको ज्यादा उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पे मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा शायद प्रेफरेंस में टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
4: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
6: नहीं कुछ नहीं, बस
7: आप ये सोच रहे होंगे केस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
8: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रफ हो।
2: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी, तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं, लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही

0: दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
1: शीलू से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप यूट्यूब पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में, मतलब शुरू से, बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। ये यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से, बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के। मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में। जिंदगी का संघर्ष जो है, किस तरह लड़ना चाहिए, वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
1: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
0: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है, वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है। वो सफ़र आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मज़ा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ। उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो, इंग्लिश का प्ले है। बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल, ना तो इंग्लिश क्लासिकल। लेकिन हाँ, पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है, तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने, ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में, कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है, जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहाँ पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठ कर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना, और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है। लेकिन अब तक जो है मेरा इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफ़ी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं, कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूं तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई, या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है, मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे

थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे। अब मैंने उनकी आवाज पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं, वही काम करते हैं पुराने गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: खबर मिल।
1: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
2: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
1: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
3: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
1: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माय लव, संगीतकार दान सिंह। फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।